नदियां कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वे रास्ते में आने वाले चट्टानों के बीच में भी अपना रास्ता बना लेती है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, चलते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।

तो आइए इस नई सुबह से तीन बातें सीखें। फूलों से मुस्कुराना, दरिया से चलते रहना और सूरज से हर दिन नई शुरुआत करना। बीती रात चाहे जैसी रही हो, आज का दिन हमारे हाथ में है। उठिए, कदम बढ़ाइए और अपने आज को उम्मीद, मेहनत और मुस्कान से खूबसूरत बनाइए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। छोड़ के जा रहे हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्षयान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

0: अ मार्वलस मॉर्निंग डियर लिसनर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे रानी श्रीराम। यस, इट्स थर्सडे मॉर्निंग एंड हाँ, न्यू चैलेंजेस, न्यू टारगेट्स, अ लिटिल वर्क मूड में बिजी होंगे आप सभी लोगों पर ये दिल तो मांगे मोर, है कि नहीं? और ये तो सिर्फ और सिर्फ वीकेंड और एंटरटेनमेंट के इंतजार में रहता है। बट डोंट वरी एट ऑल, आज आपको डबल एंटरटेनमेंट पक्का मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। क्योंकि आज स्टूडियो में एक और आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, एक और अंदाज महसूस करने को मिलेगी, क्योंकि मेरे साथ है आरजे जागृति। हाय जागृति।
1: हे रानी, हेलो डियर लिसनर्स, यस दिस इज जागृति। तो आज आवाज डबल और अंदाज भी डबल।
0: यस, और एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा डबल का डबल।
1: यस, और फॉर श्योर हमारा एक थर्सडे मॉर्निंग मूड होने वाले है फुल्ली रिफ्रेश्ड।
0: तो चलिए लेते हैं मस्ती की डुबकी और किक स्टार्ट करते हैं हमारी म्यूजिकल जर्नी को विद दिस फुट टैपिंग ट्रैक ओनली ऑन FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइव।
1: रंगीन
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up,
2: Grab
3: girl?
2: my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city
3: Let's go.
2: before.

0: वेलकम बैक डियर लिजनर्स। पता है दोस्तों, जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोमेंट्स ना कभी किसी इनविटेशन कार्ड पर नहीं आते हैं, वो तो बस इत्तेफाक से यूं ही चुपके से हमारी लाइफ में एंट्री लेते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी बोरिंग ऑफिशियल ट्रिप पे हो और वहाँ सडनली वही दोस्त मिल जाए जिसके साथ स्कूल में पेपर बोर्ड्स बनाए थे, टिफिन आपका टिफिन शेयर किए थे। सालों बाद ऐसी अनएक्सपेक्टेड मुलाकात, व्हाट ए कोइंसिडेंस राइट। एक सेकेंड में सालों पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है ना। वैसे जागृति, हैव यू एवर बीन थ्रू दिस काइंड ऑफ इत्तेफाक वाली मोमेंट?
1: रानी, आई हैव एक्चुअली हैड सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस माई सेल्फ। सो एम आई दिल्सा, ए फ्यू इयर्स बैक आई वॉज एट आईमैक्स యాక్చువల్లీ విండో షాపింగ్ చేయడానికి అనుకో, అప్పుడు ఏమైందంటే ఎస్కలేటర్ మీద నిల్చొని అటు ఇటు చూస్తున్నా. అయితే సడన్గా ఎందుకో ఇట్లా వెనక్కి చూసా. యు డోంట్ బిలీవ్, మై ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ పేరు చెప్పాను కానీ ఆ ఒక్క నిమిషం నా మైండ్ బ్లాంక్ అయింది తెలుసా. లైఫ్లో అట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్

मेरी इतनी भी पास, दुआ मत कहीं मेरे हाथों से न बात निकल जाए। बोलूंगा सच में जो दे तू इजाजत, सबर भी अब करने लगा बगावत, सुल्फे है जालिम और आंखें है आफत, लगता है होने वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

Well, the time in the studio clock is 12 o'clock and 41 minutes. अब बारी है आपके टैलेंट को स्पॉटलाइट देने की. ये एक ऐसी खबर जो आपके अंदर के फोटोग्राफर को बिल्कुल जगा देगी. अच्छा, एक बात बताइए, जब भी हम कोई भी खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुरंत फ़ोन निकालते हैं और कैप्चर कर लेते हैं, राइट? फोटो लेने की हैबिट हम सब में होता है दोस्तों, पर अब वही आदत आपको दिला सकती है पूरे के पूरे 15,000 रुपीज़ तक का कैश प्राइस. जी हाँ, FTCCI यानी कि फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेकर आया है तेलंगाना थ्रू द लेंस 2026 फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट. वेदर इज द बर्सलिंग स्ट्रीट फूड, सेवन हिडन वाटरफॉल्स, एंशियंट हेरिटेज आर्किटेक्चर और कलरफुल लोकल फेस्टिवल्स, कुछ भी हो, इट इज द टाइम टू शो ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ तेलंगाना टू द वर्ल्ड थ्रू योर लेंस. और सबसे अच्छी बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है दोस्त. फर्स्ट प्राइज 15,000 रुपीज़, सेकेंड प्राइज 10,500 रुपीज़, थर्ड प्राइज 7,500 रुपीज़, एंड यू नो वट, पांच लोगों को मिलेगा 1,500 रुपीज़ का कंसोलेशन प्राइजेस. तो बस कैमरा उठाइए, अपना बेस्ट शॉट लीजिए और तैयार हो जाइए. बाकी के रूल्स, रेगुलेशंस एंड सबमिशन डिटेल्स की जानकारी देती हूँ बस थोड़ी ही देर में. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन FM रेनबो 101.9.

0: वेल फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट को थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वी हैव गॉट सम मोर मोटिवेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैरा बैडमिंटन ग्राउंड. हियर यू गो दिस. या
1: back after a small break and we have one more hero here, Ranjit Gohil, and he works as railway mail service from Ahmedabad, and now he is participating in badminton and awarded silver medal too, and he is one more hero sitting I am sitting beside him today to talk about his journey. And let's first congratulate him and then let's talk about his journey too, and kaisa chal raha hai and what made him to come into the sports, and all over the India now they are talking about such players who are physically challenged and giving challenges to the people who are perfectly physical. Hello sir.
2: Namaste, I am Ranjit Goyal from Gujarat, Ahmedabad RMS office. I am international player first. I am 96 world champion in swimming, and at this time इस बार मैं बैडमिंटन में फाइनल में हारा, लेकिन मेरा सेकंड नंबर. लेकिन हमें जिंदगी में बोलते हैं जिंदगी की वही रीते हार के बाद जीत है. जिंदगी में जीतने का जज्बा होना चाहिए. तुम्हारा लगन मिशन जो ध्येय है उसको आप लगे रहोगे तो कभी भी आप हार नहीं पाओगे, अंदर से जीते हो गया.
1: क्या बात है सर, हारना जीतना दो, सनराइज सनसेट की जैसा आपको.
2: जी मैडम, और मेरा ऐसा मानना है कि जो समाज है, जो पब्लिक हमें सोचती है बेचारा है ये फिजिकली हैंडीकेप, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ हम डिफरेंट लेवल है, हम रोल मॉडल है समाज के लिए. अगर हम कर सकते हैं तो जिसने भगवान ने उनको सब कुछ दिया है तो वो कंप्लेन करते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं या नशा करते हैं, उनको मेरे खास कहना है कि आप फिट इंडिया जो हमारा कैंपेन है उसके लिए हमको हमारी हेल्थ के भी रहना चाहिए, समाज को भी रहना चाहिए. तो हर इंसान को समाज के अंदर कुछ देना चाहिए. तो हम डिफरेंटली एबल पीपल इस समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं, हम किसी से कम नहीं है.
1: क्या बात है सर, हाउ ब्यूटीफुली यू आर मोटिवेटिंग. सर आपका इनिशियल डेज में और कभी ऐसा स्पोर्ट्स प्रैक्टिसिंग करने में कभी आपको ऐसे चैलेंजेस मिला और कोई तो भी आपको कहीं को करने की क्या बात है, आप करे तो ऐसा आप फर्स्ट आ जाता क्या, और आपको इतना इम्पोर्टेंस देते क्या कोई भी स्पोर्ट्स में, ऐसा कुछ वर्ड्स आप सुने इन योर ट्रैवलिंग ऑफ दिस द सिंस हाउ मेनी इयर्स एक्चुअली यू आर इनटू द स्पोर्ट्स. पहले वो तो
2: मैं स्पोर्ट्स में आया था मगर जब आज से 30 साल पहले जब
1: FM Rainbow, Kirti is back again. Alpesh Sutaria from Ahmedabad, Gujarat, and he is Postal Department Officer, and he is the gold medalist. अब इनसे बात करेंगे और इनके साथ और क्या कुछ interesting facts है और इसके practice के पीछे जो कुछ story है वो सब हम

0: अब इन सब मिलके सब डिटेल में उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या बोलते क्या और क्या इन्फॉर्मेशन देते बोल के। सर हेलो, गुड आफ्टरनून।
1: नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और ऑल इंडिया एफएम से जो हमको सुन रहे वो उनको हम सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा नाम अल्पेश सुतरिया है और मैं पैरा टेबल टेनिस इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, और मेरी डिसेबिलिटी 80% है और मैं व्हीलचेयर के बिना नहीं चल सकता हूँ। लेकिन मेरी जो डिसेबिलिटी है उसको मैंने कभी मेरे उस पर नहीं आने दिया है, और मैं नॉर्मल जो पर्सन होता है उसी सोच के माइंड से मैं अपना जीवन गुजार कर रहा हूँ। और मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी है वो मतलब 15 साल से शुरू हुआ है। मेरा जो बच्चा है उनको मैं छोड़ने जाता था स्पोर्ट्स के लिए, उसको मैं देखता था और रोज़ उसको प्रैक्टिस में लेना और छोड़ना जाने के लिए जो स्टेडियम था वहाँ जाता था। तब मुझे पता लगा कि मैं जो डिसेबल्ड हूँ वैसे ही प्लेयर पैरा में खेल सकते हैं। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और आज मैं 7 कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और काफ़ी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कभी ब्रॉन्ज मेडल, और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सभी जगह बहुत चैम्पियन खेल चुका हूँ। और मैं हमारी जो इंडिया की यंग जर्नेशन जो बच्चे हैं उसको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे अभी सभी घरों में एक कॉमन इश्यू है कि जो बच्चे हैं वो अपना सुबह उठते ही अपना मोबाइल हाथ में ले लेते हैं और पूरा दिन मोबाइल से मतलब बाहर नहीं निकलते। तो मेरा एक ही मैसेज है कि आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को कम से कम 1 घंटा के लिए कोई भी एक्टिविटी, मतलब फिजिकली एक्टिविटी में आप उसको मोटिवेट करो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, और हमारा जो आने वाली जनरेशन है, हमारा जो मोदी साहब का जो ड्रीम है यंग इंडिया, तो वो उसी से हम आगे हमारा इंडिया बढ़ा पाएंगे। तो कम से कम 1 घंटा अपना जीवन का स्पोर्ट्स के लिए आप रखो।
0: इतना अच्छा बोला सर, आपका इन्फॉर्मेशन और आपका सजेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
1: थैंक यू। और मतलब हमारे अभी जो बच्चे हैं वो थोड़ी चलते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं तो थक जाते हैं, और हम इतनी विकलांगता होने के बावजूद व्हीलचेयर में पूरी गुजरात, भावनगर से लेके यहाँ हैदराबाद तक ट्रैवल करते हैं और इंटरनेशनल में भी जाते हैं, तो भी हम इतना जुनून और हमारा जो मोटिवेशन है वो सब समाज को दिखाते हैं कि देखो हमारी डिसेबिलिटी इतनी है तो ये हम सब कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल है, आपके पास 2 हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, तो आप ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि हम ये जो जिसके पास कोई भी अंग नहीं है तो वो भी इतना कर सकता है तो हम भी कुछ करेंगे। तो एक ऐसा मतलब आप जीवन में एक वो बनाइए कि 1 घंटा आप स्पोर्ट्स के लिए निकाले।
0: सर आपको एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाते?
1: नहीं, मैं कभी।
0: उसका रीजन क्या है?
1: रीजन ये है कि मेरा जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का शेड्यूल है वो बहुत टाइट है। मैं पूरे दिन में 6 से 7 घंटे कंटिन्यू प्रैक्टिस करता हूँ, उसके साथ मैं जॉब करता हूँ, उसके साथ मेरी फैमिली है, तो वो सबको मैनेज करके मैं अपना पूरा दिनचर्या है वो रहता है, तो उससे मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं थोड़ा थक गया या मुझे नर्वस हो गया, तो ऐसा मुझे कभी नहीं लग रहा है कि मैं कभी थका हूँ।
0: बहुत अच्छा। तो कभी भी ये डिप्रेशन हमारे नजदीक भी नहीं आना बोले तो हम बहुत फिट रहना है और कभी भी बिजी रहना है, वही है आपकी आंसर?
1: यस, वही है कि आप जो आपके पास भगवान ने दिया है उसी को आप उसमें से क्या आप बेस्ट कर सकते हैं वही सोचो। सामने वाले का मत सोचो कि उनके पास ये है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपना खुद का देखो कि मेरे

0: సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా BLOకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: దివ్యాంగజన్ క్యా ఖేల్ పాయంగే, ఉన్కో దేఖనే కా నజరియా ఠీక్ నహీ థా, లేకిన్ హమారే మే ఏక్ జీత్ థీ, జజ్బా థా కి హమే కుచ్ కర్నా హై. ముజే యాద్ హై జబ్ మే స్విమింగ్ కర్తా థా తో లోగ్ హమే దేఖ్ కే హస్తే థే, లేకిన్ జబ్ మే వరల్డ్ చాంపియన్ హువా తో వహీ లోగ్ ముజే సలామ్ మార్ రహే థే. అచ్చా, క్యూంకి ఉన్కా నజరియా తో మేరా నామ్ రంజీత్, జీత్నా తో హమేషా ఉస్ లక్ష్య కో ప్రాప్త్ కర్తే హువే ముజే అచ్చే కోచెస్ మిలే. तो कोच की वजह से और मेरे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर मैं आरएमएस में हूँ, तो मुझे 2 घंटे का रिलैक्सेशन मिलता है प्रैक्टिस के लिए, वो मुझे काम में लगा. तो हम जॉब करने के बाद प्रैक्टिस करते, अगर हमें प्रैक्टिस नहीं किया होता शायद मुझे मेडल नहीं मिलते. तो मेरे डिपार्टमेंट के जो भी ये रूल्स है और मेरे डिपार्टमेंट के अंदर जो आला अफसर है, मेरा स्टाफ है, मेरे ऑफिसर, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया. लेकिन जब मेरे पास मेडल नहीं थे तब मैं थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन जब मैं वर्ल्ड चैंपियन हुआ उसके बाद मैं लंदन में गया, उसके बाद मेरे मेडल लगातार लगते. अभी फिलहाल इस वक्त मेरी एज 59 है, मेरे पास 185 मेडल्स है, 85 गोल्ड मेडल है और 20 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल. आई एम मल्टी टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन.
2: क्या बात है सर, यू नॉट इवन लुकिंग लाइक 59 एक्चुअली, यू आर सो यंग.
1: ये राज है स्विमिंग का. हम एवरीडे, हम हमारी लाइफ के अंदर हमेशा एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हम कोई नशा नहीं करते, हमारा खाने का जो भी शेड्यूल अच्छा रहता है उसकी वजह से हम फिट रहते हैं, तो इसीलिए हमारी एज पता नहीं लगता. लेकिन मल्टी टैलेंटेड स्पोर्ट्स बनने के लिए हमारे खुराक में हमारे बहुत, हमारे को हर जगह पे पॉजिटिव रहना पड़ता है. मैं हमेशा बोलता हूँ मंजिल उन्हें को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. हमारा हौसला बुलंद है, हमारा लक्ष्य एकदम परफेक्ट है, अर्जुन की तरह एक लक्ष्य में चलते और हम टारगेट बनाते हैं, हमें इतना घंटा प्रैक्टिस करना है, हमें गोल्ड मेडल लाना है, और लाने के लिए हमें हर मेहनत करने के लिए ऑटोमेटिक हमारा शेड्यूल बन जाता है, तो इसीलिए हमारे को मेडल मिलता है. मुझे 96 में राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हुआ है, तो उस अवार्ड मिलने के बाद भी मुझे समाज में कई जगह पर हमें VIP गेस्ट बुलाया, मीडिया में आया, सब NGO बुला रहे थे, तो हमें अच्छा लग रहा है, एंकरेजमेंट मिलता है. तो हमारे में एक बदलाव आया, अब हम एक समाज के रोल मॉडल है और वो समाज हमको देख के सीखना चाहिए कि हमें डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, हमें नशा नहीं करना चाहिए, हमें फिट रहना चाहिए. और आज जब पहले कुछ 10-15 साल पहले दिव्यांगजन का इतना वैल्यू नहीं था स्पोर्ट्स में, लेकिन जब ओलंपिक के अंदर हमारे मेडल आते गए, एबल से डिसेबिलिटी के मेडल्स बढ़ गए, तब हमारी इज्जत बढ़ गई. उसके बाद हमारे भारत देश के अंदर जब मेडल आए तो हर NGO ने सपोर्ट किया, CSR फंडिंग मिलना चाहिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ONGC उन्होंने स्पॉन्सर किया. तो अब हमारे लगातार इंडिया के अंदर मेडल बढ़ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है. तो अब हम समाज के अंदर एक ऐसे उभर के आए हैं कि हम किसी से कम नहीं है.
2: सर वो तो सही, आप किसी से कम नहीं. और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेडल आए तो और आपका इंटरेस्ट और आपका इंथुजियाज्म, आपका एनर्जी बढ़ते जा रहा, और कभी आपको मेडल नहीं आए तो आप इतना नुकसान हो के और प्रैक्टिस करना बोल के आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पोर्ट्स कंटिन्यू किया, वो तो कितनी अच्छी बात है, वो मुझे तो बहुत पसंद लगा.
1: नहीं, यही होता है, जब हम हारते ना तो हमारे में एक जुनून होता है, हमारी दिमाग की बैटरी चार्ज होती है. मुझे तो ऐसा कि कोई मुझे तकलीफ देना चाहिए, मुझसे कोई नेगेटिव बात करना चाहिए, मुझे गिराने की कोशिश करने, तब हम डबल चार्ज होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं. और उसका अचीवमेंट जब होता है ना, उसकी मज़ा, उसका चार्म कुछ अलग होता है, क्योंकि हम एक जवाब देते हैं, उनकी सोच को बदल देते हैं कि आपकी सोच गलत थी, हम सही थे, आप सोच बदलो, हमारी, हमारे बारे में अच्छा सोचो, हमें सपोर्ट करो, हमें अप्रिशिएशन करो और हम आगे बढ़ेंगे, हमें नेगेटिव बात नहीं बोलो, हमारा देखने का नज़रिया बदलो, हम भगवान ने जो भी दिया है हम एक्सेप्टेड. लेकिन हमने हमारे आपको कभी, मैंने हमारे दिमाग में, मैंने मेरे आपको कभी दिव्यांग नहीं समझा. दिव्यांग वो है जो समाज के लिए काम नहीं करता,

होते हैं। आज इस टूर्नामेंट का फिनाले जरूर है, पर इनका ये जोश हम सबको सबके साथ हमेशा रहेगा। इसी जोश को बरकरार रखते हुए एक वंडरफुल सॉन्ग इन सभी खिलाड़ियों के लिए, आप सब के लिए। स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ रंगीन।

नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में मैं गीता कौनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हर बार की तरह हमारा आज का ये कार्यक्रम आत्मिक होने वाला है, क्यों कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे ही एक मेहमान जिन्होंने 40 वर्षों तक सेनाओं के जरिए सेना में अपनी सर्विसेज देने के बाद आज सेवानिवृत्त होने पर भी अपना कार्य करना नहीं छोड़ा। अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्म से उन्होंने अपने लिए एक नए आयाम ढूंढे हैं। उनके नए आयाम क्या हैं ये बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। अति विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है और ये एक्स डायरेक्टर जनरल वर्क्स इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज एक ऐसे ऑफिसर हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारी सेना को सशक्त किया है। अक्सर हम यही कहते हैं कि सेना का अर्थ है हमारे तमाम वो फौजी जो मैदाने जंग में जाकर लड़ते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे ये फौजी सेना को सशक्त करते हैं, अपने साथियों को सशक्त करते हैं? अब आप पूछेंगे कैसे, वो ऐसे कि हमारे आज के जो गेस्ट है, मेहमान है, ये एक सोल्जर होने के साथ साथ एक मिलिट्री इंजीनियर भी हैं और इन्होंने सेना में रहते हुए असीम योगदान दिए हैं। तो आइए सर्वप्रथम सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। अशोक जी आपको बहुत बहुत स्वागत है।

0: हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर।
0: जी, जब भी हमारे इस कार्यक्रम में आप जैसी हस्तियां शिरकत करती हैं, पहुंचती हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरी ओर से यही रहता है कि वो कौन सी एक ऐसी बात थी, कौन सी एक ऐसी चाह थी जो आपको भारतीय सेनाओं की तरफ ले गई, क्या वो बात थी जिसने आपको आकर्षित किया कि अगर जाना है तो बस सेना में ही जाना है और सेना के माध्यम से ही अपने देश प्रेम को स्थापित करना है।
1: सो गीतिका, वो दौर ऐसा था जब हमारे पास विकल्प कुछ थे भी और कुछ नहीं भी थे, पर उन सब में जो परम विकल्प था वो फौज ज्वाइन करना था। और वह इसलिए भी था कि हमारे पिताजी स्वयं फौज में थे, वो इंडियन नेवी में थे और उनके साथ में हम कई वर्षों तक रहे, अलग अलग जगहों पर हमने गए और दिल में एक ऐसी उम्मीद थी कि हम भी उनके पद्म चिन्हों पर चलेंगे और फौज में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि कामयाब हुआ।
0: वाह क्या बात है। अक्सर ये देखा जाता है जब वो बच्चे जिनकी परवरिश फौजी माहौल में होती है तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में जिंदगी जीते हैं, तो क्या वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था जो बचपन से ही आपको रास आया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे पिताजी हमें बचपन से ही उन्होंने जो सिखलाई करी, वो चाहते थे कि जैसा वो अपने नियमित रूप में करते हैं वैसा ही हम सब करें। हमने कोशिश की कि हम उनके पदचिन्हों पर चल पड़ें और उनके जैसे काफ़ी चीज़ें सीखें। कुछ हमने सीखा, कुछ आज भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वाह क्या बात है। तो सीखने सिखाने का सिलसिला बरकरार है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि भले ही घर में माहौल स्ट्रिक्ट रहा हो तो इसके बीच शैतानियां ना हुई हो ऐसा भी मुमकिन नहीं?
1: स्ट्रिक्ट माहौल आई थिंक उन दिनों में जो तरीके थे काम करने के वो इस तरह के थे कि जब तक बच्चे को एक एक खुराक ना मिल जाती तो वो
0: जी
1: आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन आज का ज़माना शायद बदल चुका है, लेकिन हम उन चीज़ों से यूज़ टू हो चुके थे और हम अपने तरीके से, हम अपने दोस्तों के साथ में शैतानियाँ भी करते थे, खेलकूद भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे और अपने काम में कोशिश की कि हम वो अचीव कर पाएँ जो हम चाहते थे। और फौज का जो हमारा एक लक्ष्य था वो हमने उन सब चीज़ों में रहते हुए हासिल किया।
0: जी, ऐसा भी दौर आता होगा कि पिताजी लंबे समय तक कहीं बाहर रहते हों, टूर्स पे रहते हों, अपने मिशन्स पर रहते हों, तो उस बीच उनके साथ संपर्क ना हो पाता हो, तो ऐसे में किसको अपनी बात कहते और कैसे घर का सामंजस्य माताजी बनाती?
1: ये सब चीज़ें आई थिंक फौज में जब आप रहते हैं, आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स, सो आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम ज़िंदगी का एक रूप जो है वो अपने आप में एक तरीके से ढलने लग जाता है। जब आपको मालूम होता है कि आपके पिताजी जब आपके साथ में नहीं हैं तो आपने क्या क्या कार्य करने हैं, मदर के साथ में कैसे डील करना है, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में कैसे करना है और अपनी पढ़ाई का ध्यान कैसे रखना है। उन दिनों में मोबाइल्स नहीं होते थे, कम्युनिकेशन के ज़रिए चिट्ठियों के द्वारा होते थे, तो उनका एक अलग खुशी थी उसमें, एक अलग तरीका था और हमें मालूम होता था कि कब पिताजी आएंगे और कब हमारी खिंचाई होगी। लेकिन साथ ही साथ हम अपना काम करते रहते थे और वो सारी जिम्मेवारियां भी निभाते थे जो आज कम देखने को मिलती हैं।
0: एक बच्चे के लिए उसके पिता उसके रोल मॉडल होते हैं, तो जब कभी आपने अपने पिता को यूनिफॉर्म में देखा उस वक्त क्या फीलिंग आई, उस वक्त क्या सोचा आपने?
1: सो यूनिफॉर्म में तो जब से हम पैदा हुए और हमारी हम एक उस स्टेज में आए जब, तो हमने अपने पिताजी को हमेशा यूनिफॉर्म में देखा और अच्छा लगता था। वो यूनिफॉर्म सफ़ेद रंग की होती थी और वो नेवी में कार्यरत थे, सो काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पर उन्होंने पोस्टिंग करी, तो हमारा भी इरादा था कि हम भी फौज में जाएं। हम चाहते थे कि हम एयरफोर्स में जा पाएं, लेकिन हम फाइनली आर्मी में गए और आज हमें कोई शक नहीं है कि जो भी हमने आर्मी से सीखा वो काबिले तारीफ है और हमारे जीवन की जो कार्यशैली है वो उससे हमने बहुत कुछ सीख कर आज हम एक सशक्त इंसान बने हैं। इसका मैं धन्यवाद अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को, जो आज हमारे बीच में नहीं है, पिताजी हैं, तो उन सबको देता हूँ जिनके वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
0: जी निश्चित रूप से। वो पल कौन सा पल था, कैसा पल था और कब घटित हुआ जब आपने आर्मी का एग्जाम क्लियर किया? क्या थी वो पूरी प्रक्रिया जिसके तहत आप एक ऑफिसर बने इंडियन आर्मी में?
1: उन दिनों में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे और अमूमन फौजी बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही स्कूलों में पढ़ते थे और उनका काफ़ी नाम हुआ करता था, और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी, तो हमारी ये जिद्दोजहद थी।

कि हम पहला हमारा जो लक्ष्य होगा वो फौज का होगा। सो पहला जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उन दिनों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसको हम एनडीए कहते हैं, उसके एग्ज़ाम हुआ करते थे। वो उन दिनों में 11वीं के बाद होते थे, और मुझे याद है कि हम ग्रुप बना के सारे दोस्त एक साथ पढ़ा लिखा करते थे और कोशिश करते थे कि हम उसको निकल पाएं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने अपना जो इम्तिहान था वो पहली दफ़ा में क्लियर कर लिया था, लेकिन एनडीए के दौरान में कुछ ऐसे इश्यूज आए।

0: ग्रेजुएशन की बम्बई यूनिवर्सिटी से, बीएससी में उत्तीर्ण हुए, और फिर दोबारा से हमने उसी सेंटर में उसी उम्मीद के साथ फिर एक बार जूझे, और फिर पहली दफ़ा में हमने एग्ज़ाम क्लियर किया। और एयरफोर्स में जाने की ख्वाहिश तो थी, लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से हम आर्मी में आ गए।
1: जी
0: सो एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई ऐसी शिकायत या गिला नहीं है, लेकिन जो सफ़र रहा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, हमने ज़िंदगी के कई दायरे कई पहलू ऐसे सीखे जो आज तक हमारे साथ हैं, और उम्मीद है कि हम अपने बच्चों में भी ये चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं।
1: जी तो सन 1986 में आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया,
0: हाँ
1: सीडीएस
0: जी
1: एग्जाम,
0: जी
1: और
0: हाँ
1: फिर 1987 में आप कमीशन्ड हुए इंडियन आर्मी में।
0: हाँ जी
1: जी तो फिर पहली पोस्टिंग कहाँ मिली, कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन किया आपने?
0: जब हमने ट्रेनिंग के दौरान आईएमएस से निकले तो कुछ दिनों के लिए हम रुड़की में एक छोटा ट्रेनिंग कैप्सूल होता है, जिसको करने के बाद में हमारी पहली पोस्टिंग सिक्किम में आई, जो कि आपने सुना होगा नथुला पोस्ट है जो चाइना के अक्रॉस है। सो हमारी यूनिट की एक टुकड़ी वहाँ पर तैनात थी, और हम जैसे ही यूनिट पहुँचे कुछ दिन कैलिमपोंग एक जगह है जहाँ पर रहने के बाद में तकरीबन 15-20 दिन के बाद हमको वहाँ भेज दिया गया, और ऑलमोस्ट 2 साल हम वहाँ पर रहे, और जो कुछ वो सीखने को मिला उस दौरान में वो काफ़ी काबिले तारीफ था। हमने अपने अपने आप भी काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन जो हमारे सरदार साहिबान और हमारे जवान और हमारे जो अफसरान थे उनके ज़रिए हमने काफ़ी कुछ सीख ली जो आज तक हमारे साथ में बरकरार है।
1: वाह क्या बात है। एक बात और जानना चाहती हूँ आपसे, वैसे तो भारतीय जो सेना है, जो ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है, टफेस्ट ट्रेनिंग्स कहा जाता है वर्ल्ड में, लेकिन ट्रेनिंग्स के बाद भी जब आप एक ऑफिसर बन जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं, आप पर कार्यभार दिया जाता है, आपको डिसीजंस लेने होते हैं, कमांड सुनने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, तो वो मंजर कैसा था? क्या आपकी कल्पनाओं से एकदम अलग था, या जो आप सोच के गए थे बिल्कुल वैसा था?
0: आपका जो सोचने का तरीका होता है वो आपकी एक अपनी तरतीब होती है कि आप सोचते हैं कि ज़िंदगी की चीज़ें इस तरह से चलेंगी, लेकिन जब आप ज़मीन पर हकीकत में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, कई चीज़ें उसके विपरीत भी होती हैं, और आप देखते हैं कि ज़िंदगी के मायने कुछ और भी हैं, और उसमें जो सीखने सिखाने वाले लोग हैं, आपके जो सीनियर अफसरान हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो आपकी टुकड़ी के जवान हैं, जो JCOs हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उनके ज़रिए आप बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो शायद आपको अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकली शायद नहीं सिखाया जाता है। वो जब आप ज़मीनी हकीकत के साथ जुड़ते हैं तो आप वो एक अलग ही सीख होती है, और वो आपके साथ ज़िंदगी भर बरकरार रहती है। तो उसके लिए मैं अपने जवानों का और अपने जो सरदार थे उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, और उनके साथ में मैं आज भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम उनसे मिलते हैं।
1: जी यही खास बात है हमारी भारतीय सेना की, कि वो हर मंजर के लिए हमेशा तैयार रहती है और अपने सैनिकों को, सिपाहियों को, ऑफिसर्स को इसी तरह से तैयार करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी क्यों ना हो, तुम्हें डटे रहना है, टिके रहना है और हर जंग में फतह हासिल करनी है।
2: कांधे पे सूरज

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल, और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। हम कहते हैं ये कि हम में वो जज्बा है, हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम हर जंग में फतेह हासिल कर सकते हैं, पर सच मानिए ये जज्बा भी हमें हमारे सिपाहियों, हमारे सोल्जर्स, हमारी भारतीय सेना से मिलता है, और जिसकी जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मेजर जनरल अशोक कुमार। जी अशोक जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि जब हम सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, खासतौर पर जब आपने सर्विसेज ज्वाइन की, उससे पहले ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के बाद आपको एक ऑफिसर नियुक्त किया गया, आपको पोस्टिंग दी गई, लेकिन इंजीनियरिंग, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियर आप रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ही इस विभाग को ही आपने चुना या फोर्सेज ने आपके लिए इस विभाग को चुना, किस तरह थी ये प्रक्रिया?
1: सो ट्रेनिंग के दौरान आपकी क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको मौका दिया जाता है कि आप किस संस्था में, या इन्फेंट्री में, आर्टलरी में, या इंजीनियर्स में जाना चाहते हैं। तो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप जो तकनीकी ब्रांचेस हैं जिसमें इंजीनियर्स, EME, सिग्नल्स आते हैं, इनमें आप जा सकते हैं, बकायदा कि आपने BSc बैकग्राउंड किया हो और आपके पास वो डिग्री हासिल हो। सो हमारे पास में विकल्प था कि हम इंजीनियर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उन दिनों में इसमें काफ़ी कंपटीशन था, लोग काफ़ी जाना चाहते थे। तो हमारे कोर्स के दौरान हमारे 28 वैकेंसियां थीं और हम तकरीबन 200 लोग थे जिन्होंने इंजीनियर्स में ऑप्ट किया था। तो आपकी मेहनत के अलावा आपकी किस्मत भी थी, वो बैचेस में बनाते थे और हर बैच में 2 से 3 वैकेंसीज आती थी। सो आई वॉज लकी कि हमें जो मुझे ज़रूरत चाहिए था वो मिला, एंड खुशी का माहौल था जब आपने कोर ऑफ इंजीनियर्स में ज्वाइन किया। ये एक ऐसा कोर है जिसमें आप लड़ाई के दौरान में सबसे पहले दुश्मन लड़ाई में जाते हैं और लड़ाई ख़त्म होने के बाद में सबसे आखिर में आप पूरा कार्य करके बाहर निकलते हैं। सो दिस इज़ एन एडवांटेज, एंड इसमें आपको पढ़ाई लिखाई काफ़ी करनी पड़ती है, जो कि एक आम धारणा है कि फ़ौज में जब बंदा जाता है तो इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बट एज इंजीनियर्स हमें ज़रूरत है कि हम इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करें, और अगर आपकी चेष्टा है तो आप आगे उसको फर्दर एग्ज़ाम दे के आप अपने मास्टर्स भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। सो कहना कि फ़ौज में जाने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई काफ़ी है और आपके ऊपर भी निर्भर

0: करता है कि आप कितना करना चाहते हैं, बिकॉज इनका उपयोग लड़ाई के दौरान भी आता है।
1: जी, पढ़ाई का सिलसिला तो मुझे लगता है आपका बरकरार रहा, जैसे आपने खुद कहा आपने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद एमटेक भी किया, एमफिल किया आपने मैनेजमेंट स्टडीज
0: जी
1: में।
0: हाँ
1: ये सिलसिला जो था, ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार रहा?
0: ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार रहा। कई फौज आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपने जद्दोजहद करके और अपने आप को उत्तीर्ण हासिल करना होता है। सबको मौका ज़रूर मिलता है लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है, तो आई वॉज़ वन ऑफ दोज लकी वंस हु कुड मैनेज टू डू दीज कोर्सेज एंड पढ़ाई भी कर पाए, और जिससे हमारे को अच्छी ख्याति हासिल हुई और हमारे प्रमोशंस में भी इसके काफ़ी काम आए।
1: बहुत खूब। अब बात की जाए मिलिट्री इंजीनियर की, मिलिट्री इंजीनियरिंग की, अक्सर हम यही सोचते हैं कि फौज का अर्थ है कि हमारे वो सेनानी, हमारे वीर, हमारे सैनिक जो मैदानी जंग में जाते हैं, जंग लड़ते हैं और हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब भारतीय फौज की बात आती है और जब हम बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स हमारी सेनाओं को कैसे सशक्त करता है, क्या भूमिका रहती है इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियर्स की?
0: आज का दौर आपने देखा होगा, जब प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी लड़ाइयाँ देश के बाहर में हो रही हैं और जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, तो तकनीकी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे फोर्सेस में भी इंजीनियरिंग का होना बहुत ही अहमियत रखता है, और कहते हैं कि कोर ऑफ इंजीनियर्स का मायने हैं कि जब आप लड़ाई के दौरान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आप अपने फोर्सेस को मोबिलिटी प्रदान करते हैं और दुश्मन को मोबिलिटी डिनाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो अचीवेबल टारगेट है वो अचीव हो और दुश्मन को आपने टारगेट को अचीव करने में आप बाधा बने। सो आपने चाहे सुरंगें बिछानी हैं, चाहे आपने ब्रिजेस बनाने हैं, चाहे आपने नौका के जरिए नदी को पार करवाना है, उसमें बड़ा बड़ा जो असला है, सामान है, टैंक्स हैं, ये सब पार कराने और लाने और ले जाने की जिम्मेवारी कोर ऑफ इंजीनियर्स को दी जाती है। साथ ही साथ जब दुश्मन दूसरी तरफ से हमला करता है तो उसमें माइने या सुरंग लगाने का कार्य भी इंजीनियर्स को दिया जाता है, जो कि हम अपनी सूझबूझ और हमारे सिखलाई के तरीके से करते हैं। इसी प्रकार जब दुश्मन की जो मोर्चा है उसको हम हासिल कर लेते हैं तो वहाँ पर हम रिकूप करके दोबारा से उसको एस्टैब्लिश करते हैं और जो हमारी टुकड़ियाँ हैं पीछे उनको सामने लाके फिर लड़ाई को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जब लड़ाई लगती है तो हम एयरफोर्स के साथ में भी मदद करते हैं, जब हमारे हवाई अड्डे होते हैं उनको बनाने में, या कोई नुकसान हो गया है उसको दोबारा से रिहैबिलिटेट करने का काम भी हमारा है। सिमिलरली नेवी के जहाज़ों के लिए जो युद्ध पोत वगैरह हैं उसमें जो चीज़ें बनती हैं या कोई चीज़ बिगड़ गई है उसको भी ठीक करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार में लाने का और लड़ाई के लिए सशक्त बनाने का कार्य भी हम लोगों का होता है। सो काफ़ी काम होते हैं जो कि तभी हासिल हो सकते हैं जब आपने पीस दौरान में अच्छी पढ़ाई की हो, उसको अमल में लाए हों और देश के सुरक्षा कार्यों में उसकी आपने एक नीति बनाई है जिसके कारण हम वी अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव।
1: जी, तो ना केवल भारतीय सेना को सशक्त करती है मिलिट्री इंजीनियर्स, बल्कि आम जनमानस के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही सार्थक साबित होती है। यू आर हेल्पफुल टू द एंटायर नेशन इन डिफरेंट वेज। तो किन किन तरीकों से हमारी मिलिट्री इंजीनियर्स जो है देश के लिए कार्य
0: जब कहीं
1: करती है?
0: देश पर आपदा आती है, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं लैंडस्लाइड्स आ गए, तो उसमें जब रेस्क्यू मिशंस होते हैं तो उसमें भी हमारे इंजीनियर्स का काफ़ी काम होता है। जब हमें दुर्गम इलाकों में हम जाते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल्स में उनको लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी हम भारत की जनता के प्रति या बाहर के देशों में हम जो भी फैसिलिटीज़ पहुंचा सकें वो टाइम से दें, ताकि इंसान को इंसान की जो ज़रूरत महसूस होनी चाहिए उसमें हम एक भागीदार बन सकें।
1: जी, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता होगा हमारे ऑफिसर्स के लिए कि वो निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है इंजीनियर्स को इंजीनियर्स बनाने में। ऐसे में मिलिट्री इंजीनियर्स भी उनकी लगातार अपने सर्विसेज दौरान ट्रेनिंग चलती होंगी,
0: हाँ जी
1: ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनकर वो अपने आप को सशक्त करते हैं कहीं ना कहीं कि क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ नया किया जा सकता है। तो आपके साथ भी लगातार ट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी रहा
0: ये
1: होगा?
0: सिलसिला हमेशा जारी रहता है, बिकॉज देश में इतने विकल्प हैं कि आप सोचते हैं कि आप ही कर रहे हैं, आपने लड़ाई

0: है अपने एक दुश्मन से जीतनी है, और वो भी अपने तरफ अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी तकनीक के द्वारा कोशिश में रहता है कि आपसे अच्छा आ सके। जब तक आप उसकी सोच को विफल नहीं कर पाएंगे, और वो होगा जब तकनीक में आप बकाया आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और उससे बेटर हासिल करेंगे, तभी आप जंग को जीत पाएंगे। सो आने वाले समय का जो दौर है वो एक फिजिकल लड़ाई है और एक है जो तकनीक के द्वारा जीते वाली जाने वाली लड़ाई है। और हम देख रहे हैं कि आज बाहर के देशों में, चाहे वो ईरान की लड़ाई चल रही हो, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, उसमें छोटे छोटे देश भी अपनी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए कितनी बहादुरी से और दिमाग से लड़ने की कोशिश जारी है। तो वो शायद चीज़ें हमें भी हासिल करने की ज़रूरत है, हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं।
1: जी, तो 100 बातों की एक बात कि एक सोल्जर को मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ता
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: अगर उसे जीत हासिल करनी है, चाहे वो मैदान की जंग में हो या फिर हमारे सिविलियंस की जिंदगियों की बात क्यों ना हो। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा मुस्तैद हैं हमारे लिए। एक बात और यहाँ पे आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने खुद बताया था कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आप बहुत खुश हैं कि आपने इंडियन आर्मी के जरिए अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दिखाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने ये भी कहा कि किस तरीके से मिलिट्री इंजीनियरिंग की जब बात होती है तो आप एयरफोर्स, नेवी सबके लिए काम करते हैं, आपने भी ऐसा किया है, सभी
0: बिल्कुल
1: फोर्सेस के लिए आपने काम किया, उस वक्त खुशी तो बहुत हुई होगी। कहते हैं कि जीवन ना एक चक्र की तरह है, कभी कभी जहाँ छूटता है वही जिंदगी को ले
0: भाई,
1: आता है। तो
0: बिल्कुल
1: जब
0: आप सही कह रहे हैं। बिकॉज यू नो, एक व्हेन यू आर यंग, आप कोशिश करते हैं कि आप वहीं जाना चाहें जहां पर आपकी यू नो आप जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार भगवान के तरीके अलग होते हैं। तो शायद वो यू नो मुझे पायलट बनाने से किसी तरह से वंचित किया, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल के दौरान में एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ खूब जमकर काम किया, और एक ऐसी फीलिंग आई कि हम उन्हीं का एक हिस्सा हैं। चाहे हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई कार्य हो या कहीं भी हो, तो एयरफोर्स की सुविधाएं हमें मिलती थी, और अच्छा लगता था जब हम उनके जहाज़ों में बैठकर दूर दराज के क्षेत्रों में देखते थे कि भाई कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है इंजीनियरिंग की, जिससे उनको सहूलियत मिलेगी और हमारे जो देश के सिपाही हैं उनके कार्यशैली में एक क्षमता बढ़ेगी, जिससे जिसका हमें काफ़ी गर्व है। तो हमने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े रनवे बनवाए, टैक्सी ट्रैक्स बनवाए, एयरपोर्ट्स हवाई जहाज की जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाई, जिनकी वजह से आज हमारी सेनाएं वो सब हासिल कर पा रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है।
1: एक बात और, क्या मिलिट्री इंजीनियरिंग आपको दूरदर्शिता प्रदान करता है? क्योंकि कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में किसी को भी पहले से नहीं पता होता है, लेकिन एक मिलिट्री पर्सन के लिए, एक इंजीनियर के लिए, खासतौर मिलिट्री इंजीनियर के लिए, क्योंकि वो सशक्त कर रहा है फोर्सेस को, उसके लिए अनफोर्सीन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कुछ नया इजाद करना कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: बहुत दुरुस्त आपने सवाल किया, और ये चीज़ें बहुत ही कारगर हासिल होती हैं जब आप अपनी इंजीनियरिंग के यू नो ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ का एहतियात करते हैं जिससे हमारे पूरे फोर्सेस को एक अच्छा मौका मिलता है, और जो कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान जो कभी हमने सोचे नहीं थे। हमें जब ऐसे टास्क मिले तो क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग की नॉलेज और हमारे जो लोगों ने हमें सिखाया वो इतनी कामयाब हुई कि हमें खुद सोचकर अच्छा लगा कि हमने सही किया, जो चीज़ें हमने सीखी और हम अपने देश के काम आ सके।
1: जी, सबसे बड़ा जज्बा तो एक फौजी के लिए यही होता है कि वो अपने देश के लिए काम कर रहा है, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपने देश प्रेम से, और शायद इस सुख से बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। जीवन के 40 वर्ष आपने भारतीय सेना को दिए हैं, तो जब पीछे अतीत के पन्ने पलट कर देखते होंगे, बहुत सारी बातों को याद करते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना एक सुखद सांस उसको आप रोज भरते होंगे और अपने कार्यकाल को जो आपने जिया है उसे जरूर याद करते होंगे।
0: नहीं, अच्छा लगता है, बिकॉज़ जो आपकी बचपन की उम्मीदें थीं और आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना
1: करना
0: चाहता
1: चाहते
0: है। ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ौज में हो या ना हो, हर इंसान, एक हर नागरिक इस देश का अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है। लेकिन हमें एक सौभाग्य मिला कि हम काफ़ी नज़दीकी से अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, काफ़ी कुछ कर पाए। काफ़ी वर्क इन प्रोग्रेस है जो आने वाली जनरेशन से वो करेंगी, बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारी सिखलाई है, जो हमें बताया जाता है कि देश के लिए 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो है नाम, नमक और निशान।
1: क्या बात
0: नाम
1: है,
0: है आपकी अपनी पलटन का, आपके अपने जिस यूनिट में आप काम करते हैं, रेजिमेंट हैं, और उसको आप कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। एक सैनिक यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ता है कि उसके किसी भी कृत्य से उस गौरवशाली नाम पर कोई आँच ना आ जाए। फिर वो नमक की बात करता है, जब जहाँ पर वफादारी और कर्तव्य निष्ठता काम आती है, और जिस चीज़ जो नमक आप खाते हो उसका यह विश्वास का वह बंधन है जो सैनिक को वर्दी कमान और अपने साथियों से कभी विश्वासघात ना करने की प्रेरणा देता है। निशान हमारे झंडे की बात होती है, यहाँ राष्ट्रीय तिरंगे रेजिमेंट के अपने झंडे और उसके इंसिग्निया का प्रतिनिधित्व करता है। निशान को हमेशा ऊंचा रखना देश के लिए एक संप्रभुता और रेजिमेंट के युद्ध समान, जो जिसको हम बैटल ऑनर्स बोलते हैं, कि रक्षा का एक संकल्प है जो कि हमारे रग रग में भर दिया जाता है। और यह एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके काम आती है, चाहे वो पीस स्टेशन हो चाहे युद्ध का क्षेत्र हो। तो तीन चीज़ें हमेशा याद करें, नाम, नमक और निशान।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई संदेश भेजना चाहते हैं संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम में, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं 9868107070 इस नंबर पर। और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। अति विशिष्ट सेवा मेडल से आपको नवाजा गया है आपके योगदान के लिए, और जिस तरह से आपने 40 वर्षों तक अपना योगदान दिया, आपके लिए सुखद पल बहुत सारे ने आपने अर्जित किए और आप भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्स, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल से आप अलंकृत हैं। और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मेजर जनरल अशोक कुमार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार, आपसे जानना चाहते हैं कि हम जीवन में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमेशा चाहता है कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। आप भी सेना में रहते हुए अलग अलग पोजिशन पर आगे बढ़ते गए, और कहते हैं कि जब आप औहदे में आगे बढ़ते रहते हैं, आपको हाईएस्ट पोजीशंस मिलती हैं, तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। बहुत सारे आपने कार्य किए, लेकिन इन सब पोजीशंस में काम करने के साथ साथ कोई एक ऐसी चीज थी जो हमेशा एक जैसी रही और साथ चली 40 वर्षों, क्या वो एक ऐसी फीलिंग थी, क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा? भले ही औहदा बढ़ता गया, जिम्मेदारी बढ़ती गई, लेकिन वो फीलिंग जब ज्वाइन किया था फोर्सेस तब भी वैसी थी, और जब फोर्सेस छोड़ी तो आज भी वो बात जिंदा है, आपके दिल में पेवस्ट है।
1: जब आप किसी भी महकमे में जाते हैं, करते हैं, तो सबसे बड़ा जो एहसास है वो, खासकर जो फौज का महकमा है, वो एक आपको ऐसी उम्मीद देता है कि ये आप इसी को बिलोंग करते हो और इसी में आप बसते हो। और वो जो चीज़ है वो आज भी ऐसा लगता है कि आप आज भी फौज में हैं, भले ही वर्दी नहीं पहनी है, लेकिन एक एक एक एहसास होता है कि मैं इसी में जिया हूँ और मैं इसी में मरना चाहता हूँ। दूसरा जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें लगता है फौज से, एटलीस्ट मुझे सीखने को मिला है, कि आप जब से फौज में आते हैं और जाते हैं, हमेशा ये सीखने को मिला कि आप अपने जो, जिनकी वजह से आप वहाँ तक पहुँचे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अधिक अधिकारी हैं, बट जो जवान हैं, जो सबसे नीचे वाला तबका है, जो आपकी तरफ देखता है कि ये हमारा साहब है, और बिना कुछ कहे आपस में हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, वो एक ऐसी उम्मीद रखता है जिसमें आप बिना बताए, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो चाहे अदरवाइज हो, आप उनकी उम्मीदों पे अगर खरे उतरेंगे तो आप वास्तविकता में आपने अपने जीवन को कुछ कर दिखाया है। और वो उम्मीद बिना बताए, बिना बोले हुए अगर आप कर पाते हैं और उसको साथ में लेकर चल सकते हैं, तो वो एक ऐसा अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। कई बारी आपके जवान आपके लिए इतना कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो शायद आप उसे भूल ना पाए, एक ऐसा कुछ उसकी उम्मीदों पे खरे उतरें, तो वो आपको जिंदगी भर याद करता है। और आज भी हमारे जो सैनिक हैं जो रिटायर हो गए, उनसे जब बातचीत होती है तो हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि हमने उनसे क्या सीखा और उन्होंने हमें क्या सीख दी। एक छोटा सा उदाहरण था, जब मैं फौज में गया तो पहाड़ों के इलाके में थे, हमारी पास गाड़ियाँ थी, तो हमने गाड़ी चलानी अपने एक सिपाही से सीखी। उसने हमें कोशिश की कि जो ट्रेनिंग है वो दे पाए, और गाड़ी चलते समय पहाड़ के स्लोप पर रुक गई, तो उसका नाम मुझे याद है आज भी, सिपाही ओम प्रकाश हुआ करता था। और वो गाड़ी रुकने के बाद में वो बाहर निकला, और उन दिनों में हैंडल मार के गाड़ी को स्टार्ट करते थे, वो गाड़ी इतनी जोर से हैंडल लगा कि गाड़ी उछल के और नीचे रोल होनी शुरू हो गई। तो हमने एक नाले के साइड में गाड़ी उल्टी होके चारों पहिए ऊपर और गाड़ी पलट गई। तो ओम प्रकाश का पहला वाक्य था कि लेफ्टिनेंट साहब आप घबराइए ना, हम ये जिम्मा अपने सर पे लेंगे। हमने कहा ओम प्रकाश ऐसा नहीं होगा, गाड़ी हमारी

0: वजह से गिरी है, तो हम जिम्मेवार हैं, तुम बस ये करो कि वहां से जाके कोई हेल्प लेके आओ। तो वो हादसा एक ऐसा हादसा था जहां पर आपका सिपाही आपके लिए आपको आँच नहीं आने देता है और कोशिश करता है कि मेरा जो साहब है वो हमेशा सर्वोपरि रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आप सीखते हो कि यदि आपने ऐसे दौरान में आप उनके साथ में खड़े हो, जिंदगी भर उन चीजों को याद रखता है। और आज भी जब हम पुरानी चीजें बातें याद करते हैं तो बताते हैं कि साहब आपने हमारे लिए ऐसे किया था, भले ही वो कुछ अपना प्रमोशन नहीं मांगता है या अपने लिए कुछ ऐसी चीज नहीं मांगता है, लेकिन जो उसकी सच्चाई है और उसका जो काम करने का तरीका है, वो उसके साथ में आप जिंदगी कुछ ऐसे उसूल सीखते हैं जो आपके दिल को हमेशा छू जाते हैं। और आप समझते हैं कि एक सबसे बड़ा जो आदर है वो एक इंसान का इंसान के प्रति प्यार और उसकी एक ऐसी गरिमा है जिसको अगर आप बरकरार रखें तो वो जिंदगी भर आपके शायद काम आती है, भले ही उस मोमेंट में आप शायद कुछ मिस कर जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें आपको सोच के अच्छा लगता है। एंड उन्हीं उम्मीदों के साथ में हम जीते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आने वाली जनरेशन्स को भी ऐसा ही कुछ सिखा पाएं।
1: जी पहुँच के खास बात मुझे ये लगी कि जब जब भी हम इस प्रोग्राम में संदेश टू सोल्जर्स में आप जैसे ऑफिसर से बात करते हैं कि फौज में कोई अकेला नहीं है, हमेशा किसी हर किसी के साथ हर कोई है, ऐसा नहीं एक है, हर किसी के साथ हर कोई है। और ऐसे में जब आप अपने परिवार से दूर है तो आपको लगता है कि मेरा कौन सा ऐसा काम था जो मुझे पता नहीं लगा और वो हो भी गया, तो
0: बिल्कुल,
1: शायद एक
0: हाँ
1: बड़ी खूबसूरत बात
0: हाँ
1: है फौज
0: खूबसूरत
1: की।
0: चीज़ है। और आप जब आप आगे सरहद पर अकेले रहते हैं, अकेले मतलब आप अपने फैमिली से परिवार से दूर होते हैं, आपके जो जवान हैं वो आपको ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं जब आपको महसूस नहीं होते, और ऐसा महसूस होता है कि आपके परिवार के लोग आपके साथ में बकाया हैं, वो आपका उतना ध्यान रखता है, शायद आपका परिवार भी उस मंजर में शायद इतना ध्यान ना रखे। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब बिन बनकर आप एक साथ सोचते हैं तो वाकई एक परिवार का एहसास होता है। और एक फ़ौज में जो सबसे अच्छी सिखलाई है कि आप लास्ट मैन, यू हैव टू टच ग्राउंड विद द लास्ट मैन ऑन ऑन ऑन द फील्ड, यू कांट लीव एनी वन बिहाइंड। लड़ाई के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, आपका जवान क्षतिग्रस्त होता है, जब तक हम उसको निकाल कर सुरक्षित जगह पर नहीं लाते हैं, हम अपना कार्य का शैली को सफल नहीं समझते हैं। और कई हमारे ऐसे कोर्सेज और ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ हमने एक टुकड़ी के साथ में एक जीत हासिल करनी है, अगर उसमें आप समय से पहले आ गए लेकिन एक बंदा आपका अभी तक पीछे है, जब तक वो शामिल नहीं होगा आपकी जीत जीत नहीं मानी जाएगी। सो ये एक ऐसी मंजर है जिसको हम सीखते हैं। उसके अलावा जब कोई हमें कलेक्टिव टास्क मिलता है और हम में से कोई बंदा नहीं कर पाता है, तो उसको भी जब तक हम साथ में लेकर उस जीत को हासिल ना करें, वो जीत जीत नहीं मानी जाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ना केवल कृतज्ञता हम फौज से सीखते हैं, हम टीम स्पिरिट एकता भी हम फौज से ही सीखते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारे युवा ये कहते हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी माता पिता हैं वो गर्व से उनका सीना पहले ही चौड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि हमारा बच्चा फौज में जाना चाहता है। और यही फौज की खूबसूरत बात है कि वो सभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और हर युवा यही चाहता है कि मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना प्रेम सेनाओं को, सेनाओं में भर्ती होकर दिखाऊं। तो ये जग आपके लिए है, सेनाएं आपके लिए हैं। अब आप उसे कैसे आत्मसात करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है।

0: संदेश टू सोल्जर्स आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। एक सिपाही के लिए, एक सोल्जर के लिए, एक ऑफिसर के लिए, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, लेकिन जब उसके कार्य को, उसकी जिम्मेदारियों को, उसकी कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया जाता है तो उसके लिए सबसे सुखद पल होता है। आपके लिए भी बहुत सुखद रहा होगा, ये भी कह सकते हैं कि आपने जिस चीज का इंतजार किया वो आपके आपके शोल्डर्स पर थी, आपकी ड्रेस पर थी, आपकी यूनिफॉर्म पर थी। अति विशिष्ट सेवा मेडल जिससे आपको नवाजा गया आपके सर्विसेज के लिए, आपके योगदान के लिए। तो उस वक्त वो जो पल होता है, वो पल आपको क्या क्या याद दिलाता है? क्या आप अतीत में चले जाते हैं या सिर्फ याद करते हैं कि आज ये जो पल है, ये पल इस वजह से आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आपने बस अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखा था, इसलिए हुआ।
1: इंसान की एक फितरत है कि वो जब भी कोई काम करता है तो वो एक अवार्ड और रिवॉर्ड सोचता है। कई बारी वो अवार्ड शायद उसे तब नहीं मिलता जब वो मोस्ट हम्बली उसको डिजर्व करता है। कई बारी अवार्ड जो हैं वो ऐसे वक्त पर मिलते हैं जब आपके अंतिम चरण में आप इतना कुछ काम करके गवर्नमेंट आपके रिकग्नाइज करती है तो एक अच्छी फीलिंग आती है। इंसान इस दुनिया में जीता है कुछ कारणों से, जिनमें से वो उम्मीद करता है कि उसके काम किए गए कार्यों का एक एक उसको शाबाशी दी जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो मिले, लेकिन जब मिलती है तो एक अच्छा एहसास होता है। और मोर देन आपके अपने लिए वो एक एहसास, आपके बच्चे जो आपके साथ में आपको यहाँ तक पहुँचाने में जिनका गौरव रहा है, आपके पिताजी, आपके माता जो जिन्होंने आपको बड़े होते हुए देखा और उम्मीद करते हैं कि उनका उनके बेटे को कुछ ऐसा अवार्ड मिला जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, तो एक काफ़ी गौरव और गर्व की बात होती है। सो जैसे हम कहते हैं कि रिसीविंग द मेडल वॉज अ डीपली हम्बलिंग रिकॉग्निशन, an honor is never a resting point, it is a reaffirmation of the trust that people have in you, chahe wo aapke jawan ho, chahe aapke bacche ho,

0: आपके माता पिता हों, आपके रिश्तेदार हों, सबको एक उम्मीद रहती है. और इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द डेडिकेटेड सोल्जर्स एंड द टीम्स हुज कलेक्टिव एफर्ट मेड दैट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉसिबल. तो सभी का इसमें एक विश्वास था, एक ऐसी कोशिश थी कि सबने मिलकर आपको उस पैगाम तक पहुंचाया जिसका आप खुद जिम्मेवार तो थे, लेकिन आपके पीछे जो लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनका मैं शुक्रगुजार हूं. एंड द अवार्ड रीइन्फोर्स्ड माय कमिटमेंट टू कंटिन्यूस ड्यूटी इंश्योरिंग दैट एवरी सब्सिक्वेंट डिसीजन प्लान एंड मेंटरशिप एफर्ट रिफ्लेक्टेड द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ द अवार्ड दैट आई गॉट. सो माई सिंसियर थैंक्स टू एवरी वन हु ओवर द ईयर्स वॉज देयर विद मी इन गेटिंग एंड अचीविंग वॉट आई फाइनली अचीव्ड.
1: जी, बहुत खूब बहुत खूब. ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, और जिंदगी जीने का सलीका इस बात से पता लगता है कि हम कितने कृतज्ञ हैं. और आपकी कृतज्ञता फोर्सेस की तरफ, अपने अवार्ड्स की तरफ, और आपने जितने भी कार्य किए हैं आज तक उनकी तरफ आज इस शो के माध्यम से हमें सुनाई दी, और कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सारी प्रेरणा आपसे मिली. एक व्यक्ति जिसका जिक्र ना हमने अभी तक नहीं किया, या बेटर हाफ, शायद उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा. क्योंकि कहते हैं कि एक ऑफिसर को ऑफिसर एक माता पिता बनाते हैं, उसके अंदर वो संस्कार उसमें जीवंत रखते हैं, हमेशा उनके साथ भी उनके बाद भी हमेशा रहते हैं. लेकिन स्पाउस उन्हीं संस्कारों को आगे लेकर चलती है. आपके पीछे बहुत बार उन्होंने घर को संभाला होगा, कंप्लेन भी नहीं की होगी. लेकिन इससे पहले ये मुझे बताइए कि आप उनसे मिले कैसे थे?
0: आपने एक अच्छा सवाल पूछा. बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज़ अ वूमन, एंड अनडाउटेडली इट हैज़ बीन माई वाइफ हुज़ नेम इज़ प्रीति. और जो गुड पार्ट है वो ये है कि हमारे जो दोनों के पेरेंट्स थे वो फौज में कोर्समेट्स थे जो नेवी में साथ में आए, और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे. और भाग्यशाली रहे कि हम आपस में हमारी शादी हुई और हमने अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जिया. और जो भी मैंने हासिल किया उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मेरी बेटर हाफ प्रीति का था, एंड शी इज़ रियली वर्कड हार्ड फॉर वॉट एवर आई एम टुडे. एंड माई चिल्ड्रन हु निहारिका एंड आर्यन हु बीन वंडरफुल एंड दे स्टूड लाइक रॉक बिहाइंड मी इन एवरी गुड और बैड पैटर्न्स ऑफ लाइफ. एंड इन द एंड इट वॉज एन अचीवमेंट विच आई कांट थैंक लेस टू दीज पीपल. एंड प्रीति इज नाउ रिमेन्स माई बिगेस्ट क्रिटिक, बट द काइंड ऑफ लेसन दैट शी इज गिवन मी इज समथिंग विच इज विच आई वोंट हैव डन डन ऑन माई ओन. एंड मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भगवान ने अच्छी बच्चे दिए, अच्छी पत्नी दी, माँ बाप पेरेंट्स ने जो हौसला दिया जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा. और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जो हर माँ बाप अपने बच्चे में देखता है, हर वाइफ हर हर हस्बैंड अपनी वाइफ में देखता है, और अपने बच्चों को आँख में आँख मिलाकर उम्मीद करता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज यहाँ तक पहुँच पाए.
1: वाह, बहुत खूब. और एक ग्रैटिट्यूड हमारी तरफ से तमाम लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें संदेश भेजे हैं और आपको सल्यूट कर रहे हैं. पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जय हिंद यहाँ पर लिखकर भेजा है. बीके दत्त कॉलोनी से शबनम ने, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से प्यार देते हैं हमारे फौजियों को काबिले तारीफ है. संदेश यहाँ पर भेजा है नुसरत अली ने, और संदेश हमें हमारे पास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से भी आया है जोया का, और ये आपके करेज को सलाम कर रही है. सलाम कर रहे हैं यहाँ पे आहिल अली बीकानेर से. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त. यश शिंदे ने हमें संदेश भेजा है मुंबई से, और संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं. ये हैं धारा शिव महाराष्ट्र से, यशवंत इनका नाम है. और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद. मोहम्मद इद्रिस ने संदेश भेजा है, और संदेश भेजने वाले बहुत से दोस्त हैं. कुछ दोस्त ये पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम अलग सेशन आपके लिए ज़रूर आयोजित करेंगे. यहाँ पर मध्य प्रदेश से अजय का हमारे पास संदेश आया है. बहुत बहुत धन्यवाद. सभी दोस्तों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और धन्यवाद देना चाहते हैं मेजर जनरल अशोक कुमार जी का. मैं बस एक बात कहूंगी, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, बट वंस अ मिलिट्री इंजीनियर इज ऑल्सो अ मिलिट्री इंजीनियर फॉर एवर. ये बात सच है ना?
0: बिल्कुल दुरुस्त है.
1: और इसीलिए इन्होंने काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा है, और ये कहेंगे कि इनकी इंजीनियरिंग आज तक कायम है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कहां कैसे इन्होंने आपके लिए आपका कोई सपना साकार कर दिया. अगर मन में ये बात आए तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं हमारे ये जो फौजी हैं फौज में रहकर

0: भी और फौज के बाद भी आपके लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। अब ये एक नगमा एफएम रेनबो की तरफ से, हम एफएम रेनबो का क्रेडिट ले रहे हैं, हम प्रीति मैम को ये डेडिकेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद,
0: जय हिंद।

0: दोस्तों 101.9 एफएम पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। सबसे पहले आज नैरंग में पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील आपको बताते हैं। दोस्तों प्रोग्राम का आगाज होगा हर्फ ताबिंदा से। तहरीर पेशकश होगी मशकूर अहमद की। उसके बाद आप सुनेंगे मजाहिया मुशायरा। मुशायरे में अपना कलाम पेश करेंगे उस्ताद सुखन जनाब चचा पाल मोरी, जनाब सरदार असर, जनाब डॉक्टर मोइन अमर बंबू, जनाब लतीफुद्दीन लतीफ और जनाब साजिद संजीदा साहब। उसके बाद आप गीत सुरीले गाते जा में सुनेंगे खूबसूरत और प्यार भरे नगमे। और प्याम शब के साथ नैरंग इख्तिताम पजीर होगा। तहरीर पेशकश होगी जनाब जैदी साहब की। तो आइए प्रोग्राम नैरंग का आगाज करते हैं हर्फ ताबिंदा से। तहरीर पेशकश है मशकूर अहमद की। लीजिए समाअत कीजिए।
1: तालीम हर इंसान की बुनियादी जरूरत है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत। ये एक ऐसा हक है जो हर फर्द को बाइख्तियार बनाता है और उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तालीम इंसान की सोच को वसअत देती है। यह हमें सिखाती है कि हम कैसे बेहतर फैसले करें, दूसरों का एहतराम करें और एक ज़िम्मेदार शहरी बने। एक तालीम याफ्ता फ़र्द न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है बल्कि अपने ख़ानदान और पूरे माशरे पर भी मुसबत असर डालता है। सामीन, तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होती बल्कि ये इंसान की शख्सियत को निखारती है। यह हमें तहजीब, अखलाक, बर्दाश्त और इंसानियत का दर्स देती है। सामीन, तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होती बल्कि ये इंसान की शख्सियत को निखारती है। यह हमें तहजीब, अखलाक, बर्दाश्त और इंसानियत का दर्स देती है। तालीम के ज़रिए हम मुख्तलिफ सकाफ़तों को समझते हैं और एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ जीना सीखते हैं। आज का दौर इल्म और टेक्नोलॉजी का दौर है। तालीम ही वो ज़रिया है जो हमें जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करती है, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी, तिब, इंजीनियरिंग या दीगर शोबे। हर मैदान में कामयाबी के लिए तालीम ज़रूरी है। तालीम न सिर्फ रोज़गार के बेहतर मौके फराहम करती है बल्कि मईशियत को भी मजबूत बनाती है। जब एक मुआशरा तालीम याफ्ता होता है तो वहाँ तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम आता है। सामीन, तालीम का एक अहम पहलू ये भी है कि ये इंसान में खुद एतमादी पैदा करती है। एक तालीम याफ्ता फ़र्द अपनी बात बेहतर अंदाज में पेश कर सकता है, अपने हुकूक को समझता है और दूसरों के हुकूक का भी ख्याल रखता है। इसी बात को एक खूबसूरत शेर में यूं बयान किया गया है कि इल्म की रोशनी से रोशन हो हर एक इंसान, इल्म की रोशनी से रोशन हो हर एक इंसान, उसी में है तरक्की, उसी में है पहचान। सामीन, तालीम एक ऐसी दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। जब हम इल्म को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो न सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि माशरा भी तरक्की की राह पर गामजन होता है। ख़ास तौर पर जब हर फर्द को तालीम के मसावी मौके मिलते हैं तो माशरा ज़्यादा मजबूत, मुतवाजन और खुशहाल बनता है। यही वो रास्ता है जो हमें एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है। सामीन, तालीम का मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी है। एक ऐसा इंसान जो ईमानदार हो, बाअख़लाक हो और माशरे के लिए मुफीद हो। आखिर में बस इतना ही कि तालीम एक रोशन चिराग है और हमें इस चिराग को हर दिल तक पहुंचाना है, क्योंकि जब हर फर्द तालीम याफ्ता होगा तो हमारा माशरा भी तरक्की, अमन और खुशहाली की मिसाल बन जाएगा।
0: दोस्तों अभी आपने सुना हर्फ ताबिंदा। तहरीर पेशकश थी मशकूर अहमद की। सामईन फिलहाल लेते

0: FM Rainbow 101.9
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत कल रात यानी 4 सितंबर को आप सुन सकते हैं। डॉक्टर एस डी विष्णु सत्या को उनवान होगा न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन यूनानी मेडिसिन, यानी यूनानी मेडिसिन में हामला खवातीन के लिए गजाइयत से भरपूर खुराक। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर। दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। अब से कुछ देर पहले आपने सुना हरफता बिंदा और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं मजाहिया मुशायरा। मजाहिया मुशायरा में आज हम जिन शोरा का कलाम सुनेंगे उनके नाम हैं उस्ताद सुखन जनाब चचा पाल मूरी साहब, जनाब सरदार असर, जनाब डॉक्टर मोइन अमर बम्बू, जनाब लतीफुद्दीन लतीफ़, जनाब साजिद संजीदा साहब। तो आइए मजाहिया मुशायरा समाप्त कीजिए और भरपूर अंदाज में लुत्फ़ अंदोज़ होइए। लीजिए समाप्त कीजिए।
2: हमेशा की तरह हम लाए हैं आज भी आपके लिए दिलचस्प मिजाहिया मुशायरा। आज का ये मुशायरा हिंदुस्तान के नामवर उस्ताद सुखन शायर चिचा पालमुरी की सदारत में मुनाकिद हो रहा है। इस मुशायरे में मुल्क के जाने माने शोरा अपना कलाम पेश करेंगे, जिनमें सरदार असर, डॉक्टर मोइन अमर बम्बू, लतीफुद्दीन लतीफ, साजिद संजीदा और सदर मुशायरा चिचा पालमुरी हैं। दोस्तों, ये शोरा हैं जिनकी पहचान सारी अदबी दुनिया में है, न सिर्फ रियासती बल्कि बैनुल अक्वामी सतह पर जाने जाते हैं। आइए मुशायरे की इब्तदा एक ऐसे शायर से करते हैं जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में मुशायरों में अपनी पहचान बनाई है, जिनका मजाहिया कलाम सुनने के बाद इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है के कलाम में तगज़ुल किसे कहते हैं। मेरी मुराद जनाब साजिद संजीदा से है। नाम का जुज जरूर संजीदा है, लेकिन ये बहुत अच्छा मिजाह तख्लीक करते हैं। उन्हीं के इस शेर से मैं उन्हें दावत सुखन देना चाहूंगी। लोग कहते हैं देर शाना हूँ, लोग कहते हैं देर शाना हूँ, मुझको लगता है मैं दीवाना हूँ। जनाब साजिद संजीदा।
3: गजल का मतलब पेशे खिदमत है। हूर परी सा चांद सा उसका चेहरा है कि क्या है कि, हूर परी सा चांद सा उसका चेहरा है कि क्या है कि, जुल्फों का भी उसकी रंग सुनहरा है कि क्या है कि, हूर परी सा चांद सा उसका चेहरा है कि क्या है कि, जुल्फों का भी उसकी रंग सुनहरा है कि क्या है कि। शेर देखिए, अपनी बीवी के ताने सुनकर भी वो खामोश रहा, वो भी मेरे जैसा गूंगा बहरा है कि क्या है कि, वो भी मेरे जैसा गूंगा बहरा है कि क्या है कि, कैसे मिलने जाऊं उसके घर को ये डर लगता है, कैसे मिलने जाऊं उसके घर को ये डर लगता है, उसके घर पे उसके बाप का पहरा है कि क्या है। मेरे किस्से हैं मैगजीनों में, मेरे किस्से हैं मैगजीनों में, मैं हूँ मशहूर सब हसीनों में।
4: क्या बात है भाई, वाह वाह।
3: मेरे किस्से हैं मैगजीनों में, मैं हूँ मशहूर सब हसीनों में, कितनी जरखेज है जमी घर की, खिल गया फूल 9 महीनों में।
4: क्या बात है,
3: कितनी जरखेज है जमी घर की, खिल गया फूल 9 महीनों में, एक से बढ़ के एक कुटनी है, एक से बढ़ के एक कुटनी है, बात ये मुश्तरिक है तीनों में।
4: क्या बात है भाई,
3: एक से बढ़ के एक कुटनी है, बात ये मुश्तरिक है तीनों में। लीमू कैरी इमली जामुन बेरा तोड़ के ला सकता हूँ, कैसे तोड़ के लाऊं हौली चांद सितारा नक्को कर, कैरी इमली जामुन बेरा तोड़ के ला सकता हूँ, कैसे लाऊं तोड़ के हौली चांद सितारा नक्को कर, क्या बोलेंगे लोगा सुन के तेरी चीखों की आवाज, क्या बोलेंगे लोगा सुन के तेरी चीखों की आवाज, खामोशी से प्यार करेंगे शोर पुकारा नक्को कर।

0: खामोशी से प्यार करेंगे, शोर पुकारा न पोकर। गजल का मतलब अर्ज करता हूँ, 70 से ऊपर है फिर भी बोली 55 झूठी है, 70 से ऊपर है फिर भी बोली 55 झूठी है, अब मुझको मालूम हुआ है मेरी समधन झूठी है, लोगों से कहती फिरती है काम बहुत करती है वो, लोगों से कहती फिरती है काम बहुत करती है वो, मैं धोता हूँ घर के सारे कपड़े बर्तन
1: झूठी है, क्या बात है,
0: मैं धोता हूँ घर के सारे कपड़े बर्तन, पैदाइश है ओट्टे पल्ली की और कहती है मुझसे अमेरिका में गुजरा मेरा पूरा बचपन
1: झूठी है, झूठी है, क्या बात है भाई,
0: अमेरिका में गुजरा मेरा पूरा बचपन, क्यों मैं घूर के देखूंगा उसको वो हूर परी है क्या, क्यों मैं घूर के देखूंगा उसको वो हूर परी है क्या, मेरी बीवी से बोली कल मेरी पड़ोसन
1: झूठी है,
0: झूठी है, शादी के दिन शादी खाने में फैला दी ये अफवाह, शादी के दिन शादी खाने में फैला दी ये अफवाह, चोरी हो गए 10 तोले सोने के कंगन, कम से कम 40 की होगी लेकिन उसका कहना है, कम से कम 40 की होगी लेकिन उसका कहना है, अब तक उसने देखे हैं बस 16 सावन,
1: क्या बात
0: झूठी
1: है,
0: अब तक उसने देखे हैं 16 ही सावन, बेगम के बचपन की एक सहेली ने मुझसे ये कहा, बेगम के बचपन की एक सहेली ने मुझसे ये कहा, देख के तुमको बढ़ जाती है दिल की धड़कन
1: झूठी
0: है, देख के तुमको बढ़ जाती है दिल की धड़कन, शौहर हूँ मैं दोनों की ही रग रग से मैं वाकिफ हूँ, शौहर हूँ मैं दोनों की ही रग रग से मैं वाकिफ हूँ, छोटी दुल्हन सच्ची है पन उसकी सौतन झूठी है, छोटी दुल्हन सच्ची है पन उसकी सौतन झूठी है। गजल का मक्ता पेश करता हूँ, मुझ पर रोब जमाने की खातिर साजिद वो बोली थी, मुझ पर रोब जमाने की खातिर साजिद वो बोली थी, उसके बाप ने बनवाया है उर्दू मस्कन,
1: अरे क्या मक्ता है भाई, वाह वाह,
0: मुझ पर रोब जमाने की खातिर साजिद वो बोली थी,
1: क्या बात,
0: मुझ पर रोब जमाने की खातिर साजिद वो बोली थी, उसके बाप ने बनवाया है उर्दू मस्कन झूठी है, 70 से ऊपर है फिर भी बोली 55 झूठी है, अब मुझको मालूम हुआ है मेरी समधन झूठी है। गजल का मतलब पेश करता हूँ, किसके साथ चलेगा मेरे इश्क का चक्कर, क्या है कि
1: क्या बात है,
0: किसके साथ चलेगा मेरे इश्क का चक्कर,
1: क्या है कि
0: अरमाना तो खूब है दिल में मेरा मुकद्दर, क्या है कि
1: क्या बात है,
0: किसके साथ चलेगा मेरे इश्क का चक्कर, क्या है कि अरमाना तो खूब है दिल में मेरा मुकद्दर, क्या है कि प्यार बहुत करता हूँ उससे कैसे ये इजहार करूँ,
1: क्या बात है,
0: प्यार बहुत करता हूँ उससे कैसे ये इजहार करूँ, फोन तो उसके पास है लेकिन प्यार बहुत करता हूँ उससे, प्यार बहुत करता हूँ उससे कैसे ये इजहार करूँ, प्यार बहुत करता हूँ उससे कैसे ये इजहार करूँ, फोन तो उसके पास है लेकिन उसका नंबर क्या है कि, कहते हैं दिन पैदाइश का मेरी था इतवार का दिन, कहते हैं दिन पैदाइश का मेरी था इतवार का दिन, मेरी पैदाइश का महीना जून दिसंबर, क्या है कि
1: क्या बात,
0: मेरी पैदाइश का महीना जून दिसंबर, सबकी आंखों की जैसी लगती है उसकी भी आंखें, उसकी आंखें दरिया नदिया झील समंदर, सबकी आंखों के जैसी लगती हैं उसकी भी आंखें, सबकी आंखों के जैसी लगती हैं उसकी भी आंखें, उसकी आंखें दरिया नदिया झील समंदर, क्या है कि समझ नहीं आता है कुछ भी मुझको खेल सियासत का, समझ नहीं आता है मुझको कुछ भी खेल सियासत का, कौन मदारी किसकी रस्सी किसका बंदर,
1: क्या है कि क्या बात है,
0: कौन मदारी, समझ नहीं आता है कुछ भी मुझको खेल सियासत का, समझ नहीं आता है मुझको कुछ भी खेल सियासत का, कौन मदारी किसकी रस्सी किसका बंदर, क्या है कि शेर अर्ज करता हूँ, रात को अच्छी थी बेगम की सूरत अभी ददोड़े हैं, रात को अच्छी थी बेगम की सूरत अभी ददोड़े हैं, रात को अच्छी थी बेगम की सूरत अभी ददोड़े हैं, किसने काटा होगा उसको खटमल मच्छर, क्या है कि मुझको अपनी बीवी से बच्चों से काम से मतलब है, को अपनी बीवी से बच्चों से काम से मतलब है, कौन पड़ोसी किसकी बीवी किसका शौहर, क्या है कि मुझको अपनी बीवी से बच्चों से काम से मतलब है, कौन पड़ोसी, किसकी बीवी, किसका शौहर, क्या है कि

0: दवा से
1: दवा
0: पहले,
1: से
0: वाह वाह वाह वाह
1: पहले,
0: वाह वाह, बहुत
1: यानी वो जहर
0: क्या
1: पिलाते
0: बात, वाह वाह
1: हैं,
0: वाह वाह,
1: दवा
0: अरे अरे
1: से
0: वाह, बहुत खूब,
1: पहले, यानी वो जहर पिलाते हैं दवा से पहले। एक और मतलब है, घुसे लाता

0: खिचड़ी कर दिया खट्टा बगार
1: वाह
0: के,
1: वाह थे भाई,
0: तैयार खिचड़ी कर दिया
1: खट्टा
0: खट्टा
1: बगार
0: बगार
1: के, वाह वाह,
0: के। चल देखेंगे,
1: इशा
0: चची
1: इशा।
0: की उंगली।

0: जैसे के तार हो गए हैं
1: वो
0: वो
1: सितार के।
0: सितार
1: वाह वाह
0: के।
1: वाह
0: यह सच्चा शेर समाज फरमाइए।
1: सब
0: हाथा
1: सब
0: है मेरे खून से दोनों रंगे हुए,
1: वाह
0: हाथा है मेरे खून से
1: दोनों रंगे
0: दोनों
1: हुए।
0: रंगे हुए, आया हूँ टोली चौकी पे मच्छरों को मार के।
1: क्या बात है
0: वाह
1: भाई, वाह वाह
0: आया
1: वाह
0: हूँ
1: वाह,
0: टोली चौकी पे
1: बहुत खूब
0: मच्छरों
1: बहुत खूब,
0: को
1: वाह वाह
0: मार
1: वाह वाह वाह
0: के,
1: वाह वाह वाह,
0: हाथा है मेरे खून से
1: दोनों रंगे हुए।
0: दोनों रंगे।

0: एक दिन तुझे कांधों पे चार के,
1: वाह
0: बाला पकड़ती पहले वो टोपी उतार के।
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: कहने
1: वाह
0: दे,
1: वाह,
0: बहुत
1: क्या बात
0: सही
1: है।
0: कहा, बहुत
1: अब तो
0: बहुत सही
1: भाई
0: कहा,
1: बना भाई के खून का प्यासा,
0: खून का प्यासा।
1: अब तो भाई बना भाई के खून का प्यासा, मच्छर खटमला थे खून के प्यासे। आज के हालात पर इतना अच्छा संजीदा लेकिन मिजाहिया शेर, उन्हीं की ये खूबी है कि वो इस तरह की संजीदा बात को भी मिजाहिया अंदाज में कहते हैं। तो सामाइन, आज हमारी इस महफिल में हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो बहुत संजीदा है, लेकिन कमाल का मिजाह उनके कलाम में मिलता है। बेहतरीन नाज़िम मुशायरा की हैसियत से जाने जाते हैं, उनकी नज़ामत मुशायरों की कामयाबी की जामिन है। जनाब
0: बस
1: सरदार असर साहब जो खूबसूरत शेर कहते हैं, जो सलीस उर्दू के अलावा दखनी जबान में भी सामईन को महजूज करते हैं। एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगी कि आज के हमारे शोरा कमाई पुत बीवी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप ही के एक शेर से मैं आपको दावत सुखन देना चाहूंगी। गुलाम आपको अपना बनाने वाली
0: अरे
1: है,
0: वाह वाह,
1: गुलाम आपको अपना बनाने वाली है, सुना है आपकी बीवी कमाने
0: अरे
1: वाली
0: वाह
1: है।
0: वाह, बहुत
1: जनाब सरदार असर साहब।
2: मुलाहिज़ा फरमाएं
0: इरशाद
2: कि गुलाम आपको अपना बनाने वाली है,
0: जी,
2: गुलाम आपको अपना बनाने वाली है, सुना है आपकी बीवी कमाने
1: कमाने
2: वाली।
0: जी,
2: मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो चाहे जूता हो, चप्पल हो या के बेलन
1: बेलन
2: हो,
1: हो।
2: हमारी अहलिया पक्की निशाने
0: अरे
2: वाली
0: वाह
2: है।
0: वाह
1: अरे
0: वाह, बहुत
2: वाह,
0: खूब, बहुत खूब,
2: हमारी
0: वाह वाह, पक्की निशाने
2: सुना
0: वाले,
2: है
0: बहुत
2: आपकी
0: खूब भाई।
2: बीवी कमाने वाली है। जनाब सदर की इजाजत से, कब किसी ने कुछ सफाई में मुझे कहने दिया,
0: जी
2: आंख से बहते थे जो आंसू उन्हें बहने दिया।
0: हवा
2: कब किसी ने कुछ सफाई में मुझे कहने
0: कहने
2: दिया,
0: दिया,
2: आंख से बहते थे जो आंसू उन्हें बहने
0: बहने
2: दिया,
0: दिया।
2: बाप भाई ने तेरे मिलकर बहुत पीटा मुझे,
0: अरे वाह,
2: राज की बातें लिखी और खत खुला रहने दिया।
1: अरे वाह।
2: और एक तज़मीन मुलाहिज़ा फरमाएं, गालिब के मिसरे से इस्तेफादा किया है कि महफिलें इन गुल रुखों से एक गुलिस्तान हो गईं।
0: अच्छा
2: जनाब सदर की तवज्जो चाहूंगा कि महफिलें इन गुल
1: जी,
2: रुखों से एक गुलिस्तान हो गईं, देखते ही देखते सब दुश्मने जां हो गईं।
0: हाँ
1: शुक्रिया।
0: हाँ
2: नाजिमा निखत नसीमा सब यहीं मौजूद
1: मौजूद
2: हैं,
0: हाँ
2: खाक
0: हाँ
2: में
0: में
2: क्या
0: क्या
2: सूरतें
0: सूरतें
2: होंगी
0: होंगी
2: जो
0: जो
2: पिन्हा
0: पिनाह हुए
2: होंगी।
0: हाँ।
2: ये दो तज़मीनें थीं। अब मैं कुछ एक खता आज के हालात पर पेश करना चाहूंगा, बल्कि शायर की जिंदगी का एक दूसरा रुख भी होता है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि अच्छे अच्छों को फन में झटकता रहा, झटकता
0: झटकता
2: रहा, शेर अपने सुनाकर मटकता रहा।
1: क्या बात है भाई,
0: क्या
1: वाह क्या
2: अच्छे
1: भाई, वाह
2: अच्छों को फन में झटकता
1: वाह,
2: रहा, शेर अपने सुनाकर मटकता रहा, लोग सारे कहां से कहां हो गए,
0: लोग
2: मैं
0: सारे
2: ख्यालों में अपने भटकता
1: भटकता रहा।
2: रहा।
1: क्या बात है भाई,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
2: लोग सारे कहां से कहां हो गए, मैं ख्यालों में अपने भटकता रहा। के बिल्कुल ही जो है एक ताजा गजल है, उसके दरमियान शेर
0: इरशाद
2: मुलाहिजा फरमाए कि मैं भी अपने दौर का जिल्ले सुभानी हूँ मियाँ।
1: क्या बात
0: क्या
1: है भाई,
0: कहने
1: वाह
0: भाई,
1: वाह वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह वाह,
2: ऐसा वैसा मत समझना,
1: हाँ
2: खानदानी हूँ मियाँ।
0: अरे
1: क्या बात
0: वाह,
1: है भाई, वाह वाह वाह,
2: मैं
0: अरे
2: भी
0: वाह,
2: अपने दौर का जिल्ले
1: जिल्ले
2: सुभानी
1: सुभानी
2: हूँ
1: हूँ
2: मियाँ,
1: मियाँ,
2: ऐसा वैसा मत समझना, खानदानी
1: खानदानी
2: हूँ
1: हूँ
2: मियाँ।
1: मियाँ।
2: और शेर देखिए कि इसलिए कड़वी लगा करती हूँ मैं सबको यहाँ।

0: इसलिए कड़वी लगा करती हूं मैं सबको यहां,
1: यहाँ।
0: झूठ की दुनिया है ये, मैं सच बयानी हूं मियां।
1: अरे
0: क्या
1: वाह
0: बात
1: वाह
0: है,
1: वाह वाह वाह,
0: झूठ की
1: क्या
0: दुनिया है ये, मैं सच बयानी हूं मियां। और ये शेर देखिए कि एक थोड़ा सा हटके है इस कबील से, कि कर लिया करता हूं मेकअप खुश लिबासी पर कभी,
1: कर
0: कर
1: लिया
0: लिया
1: करता
0: करता हूं
1: हूं मेकअप
0: मेकअप
1: खुश लिबासी पर
0: खुश
1: कभी।
0: लिबासी पर कभी,
1: कभी
0: मर्द हूं लेकिन मैं थोड़ा सा जनानी हूं मियां।
1: अरे
0: क्या कह रहे हो भाई, वाह वाह वाह
1: वाह,
0: वाह वाह।
1: क्या
0: मर्द
1: कह,
0: हूं कि मुफ्त में अब जहर भी मिलता नहीं बाजार में।
1: क्या
0: क्या
1: कह
0: बंद
1: बात,
0: बुलाया
1: बेशक
0: फरमाए,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि मुफ्त में
1: अब
0: अब जहर
1: जहर
0: भी
1: भी
0: मिलता
1: मिलता
0: नहीं
1: नहीं
0: बाजार
1: बाजार में।
0: में,
1: हाँ
0: दिन ब दिन बढ़ती हुई ऐसी गिरानी हूं मियां।
1: क्या
0: क्या
1: कहने,
0: बात है
1: क्या
0: भाई, वाह
1: कहने,
0: वाह
1: क्या
0: वाह वाह
1: कहने।
0: वाह।
1: जी
0: आजाद, इस मौके पर मुझे एक छोटा सा खुद अपना लतीफा याद आया, कि
1: जी
0: मैं जो है अब चूल्हे में अपनी अहलिया की मदद करने के लिए गया और प्याज वगैरह काट रहा था, तो हमारे अहलिया ने कहा कि इतनी सारी प्याज आपने काट दी लेकिन आपकी आंख से एक भी आंसू नहीं बहा। तो मैंने
1: जी
0: कहा, प्याज खरीदते वक्त बह गए।
1: वाह
0: तो
1: वाह
0: मुफ्त
1: वाह,
0: उसी
1: क्या
0: गिरानी हूँ
1: बात है, वाह
0: मियां,
1: वाह
0: कि
1: वाह
0: मुफ्त
1: वाह,
0: अशार जो है मुलाजा फरमाए। एक मैंने बचपने में एक पोएम पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ
1: जी
0: आई वंडर व्हाट यू आर।
1: क्या
0: तो
1: कहें,
0: उसका मैंने दूसरा हिस्सा ले लिया, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। दो
1: अच्छा
0: तीन शेर कहने की कोशिश की, बिल्कुल
1: जी,
0: सादा, उन्होंने
1: इरशाद
0: मुलाजा
1: इरशाद
0: फरमाए कि
1: इरशाद।
0: कितने घटिया हैं किरदार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर।
1: अरे
0: क्या
1: वाह
0: रहे,
1: क्या बात है,
0: दोस्त हैं और पीछे से वार, हाउ आई
1: हाँ
0: वंडर व्हाट यू आर।
1: क्या
0: वाह
1: बात,
0: वाह वाह वाह।
1: क्या कहें,
0: दोस्त हैं और पीछे से वार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर।
1: क्या
0: आप
1: बात,
0: ये शेर देखिए कि
1: इरशाद
0: एक बीवी हाँ, एक बीवी के साथ ही अब तक उम्र गुजारी मुश्किल से।
1: अरे वाह,
0: एक बीवी के साथ ही अब तक
1: उम्र गुजारी,
0: उम्र गुजारी मुश्किल से, आपने रखे पूरे चार, हाउ आई
1: क्या
0: वंडर
1: बात है,
0: व्हाट
1: वाह
0: यू
1: वाह,
0: आर।
1: अरे वाह वाह
0: आपने
1: वाह
0: रखे
1: वाह, अरे वाह वाह,
0: कि बीवी के लच्छे में हमको पदक लगाना मुश्किल है,
1: बीवी के लच्छे में हमको
0: बीवी के लच्छे में
1: क्या
0: हमको
1: ना
0: पदक
1: पदक
0: लगाना
1: लगाना
0: मुश्किल
1: मुश्किल
0: है,
1: है,
0: महबूबा को चंदनहार, हाउ आई
1: वाह
0: वंडर
1: वाह
0: व्हाट
1: वाह
0: यू
1: वाह
0: आर।
1: वाह
0: क्या
1: वाह, क्या कहने, अरे वाह
0: बात
1: वाह वाह,
0: है
1: चंदन हार,
0: भाई, वाह वाह वाह। बीवी के लच्छे
1: बहुत
0: में
1: बहुत
0: हमको पदक
1: पदक
0: लगाना मुश्किल है,
1: चंदन हार, क्या
0: महबूबा को चंदन हार, हाउ आई वंडर
1: क्या
0: व्हाट यू आर। कितने घटिया हैं किरदार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। दोस्त हैं और पीछे से वार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। और एक गजल के एक दो चार शेर मुलाहजा फरमाएं, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर के बाद मैंने कुछ हटकर कहने की कोशिश की है, कि मिल गई
1: क्या,
0: हमको सजा
1: तुझसे
0: तुझसे शनासाई
1: शनासाई
0: की, तेरे घर वालों ने जूतों से पजीराई की।
1: क्या बात है साथी,
0: मिल गई हमको सजा
1: वाह
0: तुझसे
1: वाह,
0: शनासाई की, तेरे
1: मिल
0: घर
1: गई
0: वालों
1: हमको
0: ने
1: तुझसे
0: जूतों
1: पजीराई
0: से
1: की,
0: पजीराई की। और एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना, एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना,
1: क्या
0: कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की।
1: बात है भाई, वाह वाह वाह वाह
0: क्या,
1: वाह,
0: एक
1: क्या
0: शादी का
1: डर लग रहे
0: असर मुझ पे हुआ है इतना,
1: हैं आप।
0: कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की,
1: वाह वाह वाह,
0: कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की। वो पड़ोसन पर भी हक अपना समझ लेते हैं, वो पड़ोसन पर भी हक अपना समझ लेते हैं, है यही बात बुरी मेरे बड़े भाई की।
1: अरे वाह वाह वाह,
0: मिल गई हमको सजा तुझसे शनासाई की,
1: शहनाई वाला शेर भी पढ़
0: तेरे
1: दीजिए।
0: एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना,
1: क्या बात है,
0: एक
1: शहनाई का
0: शादी का
1: असर,
0: असर मुझ पे हुआ है इतना, कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की,
1: क्या बात है भाई, वाह
0: कांप
1: वाह।
0: जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की। और एक गजल के चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाए, मैं चुनिंदा चंद शेर पेश कर रहा हूँ मुलाहिज़ा फरमाए। लीडर थोड़ा सा सियासी तंज है
1: दे भाई,
0: इसमें, तंज
1: दे
0: गालिब है, मिजाज कम है। मुलाहिज़ा फरमाए कि लीडर के पास फन ये निराला है,
1: जी,
0: रदीफ देखिए इसकी, कि
1: दी
0: लीडर के पास
1: फन ये निराला है हाथ
0: फन ये
1: में,
0: निराला है हाथ में, हुब्बे वतन है लब पे, घोटाला है हाथ में।
1: अरे
0: क्या
1: क्या कहने
0: बात है
1: भाई,
0: भाई,
1: अरे
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह
0: लीडर
1: वाह,
0: के पास फन ये निराला है हाथ में, हुब्बे
1: क्या
0: वतन है लब पे, घोटाला है हाथ में। अब दोस्ती का हाथ मैं कैसे
1: कैसे
0: मिलाऊंगा,
1: मिलाऊंगा,
0: अपनी अनानियत का जो छाला है हाथ में।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है,
0: है,
1: क्या
0: वाह
1: कहने,
0: वाह
1: क्या
0: वाह
1: कहने,
0: वाह
1: क्या
0: वाह। अब दोस्ती का हाथ मैं
1: लाजवाब
0: कैसे
1: शेर, क्या
0: मिलाऊंगा,
1: बात है, वाह वाह,
0: अपनी अनानियत का जो छाला है
1: छाला है
0: हाथ
1: हाथ
0: में,
1: में,
0: और कर दो किसी का कत्ल, चालेंगे हम तुम्हें।
1: कर
0: क्या
1: दो
0: मुलाजा
1: किसी का
0: फरमाया मीनवर
1: कत्ल,
0: साहब, कि कर दो किसी का कत्ल,
1: बचा
0: वाह,
1: लेंगे हम
0: बचा लेंगे हम
1: तुम्हें,
0: तुम्हें। मरकज के एक वजीर का साला, क्या
1: मरकज
0: बात
1: के
0: है,
1: एक वजीर का साला है हाथ में,
0: हाँ,
1: वाह
0: कर
1: वाह
0: दो
1: वाह
0: किसी
1: वाह।
0: का कत्ल।
1: यूं
0: यूं तो
1: तो
0: कमाई
1: कमाई
0: झूठ
1: झूठ
0: की
1: की
0: खाता
1: खाता
0: रहा
1: रहा
0: सदा,
1: सदा,
0: कैसे कहूं मैं सच के निवाला है हाथ में। वाह
1: क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह
1: है,
0: वाह,
1: अरे
0: बात है,
1: क्या
0: क्या
1: कहने
0: बात
1: भाई,
0: है। तो
1: वाह वाह
0: कमाई
1: वाह वाह,
0: झूठ की खाता रहा सदा, कैसे
1: वाह
0: कहूं मैं सच के निवाला है हाथ में।
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया
1: वाह,
0: हजरत, आपने
1: बहुत बहुत
0: ये
1: अच्छा
0: दिलचस्पी से सुना,
1: असर आपने छोड़ा
0: बहुत
1: है,
0: खूब बहुत खूब।
2: एक शादी का असर मुझ पर,

0: हुआ इतना, एक शादी का असर मुझ पर हुआ इतना, कांप जाता हूं सदा आते ही शहनाई की।
1: क्या कहने,
0: बेचारे वाकई बहुत
1: बहुत
0: डरे सब में
1: डरे।
0: सवाईने कराम। अब मैं हैदराबाद के एक नामवर मोहतरम शायर को दावत कलाम देती हूँ, जिन्होंने एक बड़ा अरसा अदब की खिदमत में गुजारा है। तंजो मिजाह के साथ साथ ड्रामे भी तश्कील देते रहे हैं। मेरी मुराद डॉक्टर मोइन अमर बम्बू से है। उन्हीं का एक शेर उनकी शख्सियत की पहचान है। दिल पहले तो लगाई तेरी ऐसी की तैसी, दिल पहले तो लगाई तेरी ऐसी की तैसी, अब हो गई पराई तेरी ऐसी की तैसी।
2: क्या
1: बात,
0: जनाब डॉक्टर मोइन अमर बम्बू।
3: लीजिए, सबसे पहले आदमी रिटायरमेंट होने के बाद उसकी क्या हालत हो जाए, जरा सुनिए। हालत है अपनी गिरती दीवार की तरह।
1: क्या कहने साहब, वाह वाह वाह।
3: हालत है अपनी गिरती दीवार की तरह, म्यूजियम की जंखाई तलवार की तरह।
1: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह वाह।
3: म्यूजियम की

0: बात है, क्या बात है,
1: रिटायरमेंट का एक फायदा तो हुआ मुझे
2: जी,
1: वो सुनिए क्या फायदा हुआ।
3: इरशाद,
1: मैं रिटायर्ड होकर भी हूँ काम का कुछ, मैं रिटायर्ड होकर भी हूँ काम का कुछ, बुढ़ापे में सब मेरे काम आ रही हैं।
2: क्या बात है,
1: बुढ़ापे में

0: क्या बात है, क्या बात है।
1: परसों मुझे एक लड़की मिली थी,
0: हाँ
1: परसों मुझे एक लड़की मिली थी, बोली आप इस तक छोड़ दियो,
0: हाँ
1: लेको जा रहा था, साला देखा लेकिन साला शक नहीं करता,
0: हाँ
1: मुझसे ही तुम काई को मंगे लिए पूछा, तो लड़की बोली बुड्ढों के हम साथ रहे तो देखने वाला शक नहीं
0: अरे वाह वाह
1: करता।
0: वाह, क्या बात,
2: अच्छा फार्मूला दिया है आजकल की
0: वाह
2: नस्ल
3: वाह।
1: को। लीजिए अब अकदे सानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है, अकदे सानी बोले तो दूसरी शादी को अकदे सानी बोलते हैं,
3: जी,
1: अकदे सानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है, था लिफाफा नया मजबून पुराना लग
0: पुराना
1: रहा
0: लग
1: है,
0: रहा
3: क्या
0: है,
3: बात
1: था
3: है जी।
1: लिफाफा नया मजबून पुराना लग रहा है, घूंघट उठते च मेरे दीदे निकल गए बंबू, टाप 90 था मगर रिक्शा पुराना लग रहा
3: अरे
1: है,
3: भाई वाह वाह वाह
1: माँ बाप मोटी ताजी से शादी करा दिए,
0: वाह।
1: लाही जहेज खूब तो दिल से दुआ दिए,
3: क्या कहें,
1: मैं जिंदगी की गाड़ी को कैसे चलाऊं अब, विस्पा में मेरी लारी का पहिया लगा
3: लगा
1: दिए।
3: दिया। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह, क्या मिसाल दे रहे हैं।
0: विस्पा
3: अरे वाह
0: में,
3: वाह वाह,
1: अब जरा संजीदा दौर में आ जाएंगे,
3: इरशाद
1: कौमी यकजहती पे एक नज्म है साहब, जरा
3: इरशाद
1: मुलाहजा फरमाएंगे।
0: जी,
3: इरशाद
0: इरशाद
1: जरा गौर से सुनिए,
3: इरशाद।
1: दिल में जो छुपी बात है वो आज कहेंगे, दिल में जो छुपी बात है वो आज
3: आज कहेंगे,
1: कहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे,
0: अरे वाह
3: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह वाह,
1: दिल में जो छुपी बात है वो आज कहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे, वो लुत्फ इस जहां की दौलत में नहीं है, वो लुत्फ
3: इस
1: इस
3: जहां की
1: जहां की
3: दौलत में
1: दौलत
3: नहीं
1: में
3: है।
1: नहीं है, जो इत्तेहाद में है वो नफरत में नहीं है,
3: क्या बात,
1: जो
3: वाह वाह,
1: इत्तेहाद में है
3: वो
1: वो
3: नफरत
1: नफरत
3: में
1: में नहीं
3: नहीं है।
1: है, नफरत की हवाओं का रुख आज मोड़ दो, दुनिया में भेदभाव की हर रस्म तोड़ दो, ये सारे गम जमाने के हम मिलके सहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम
3: हम
1: एक
3: एक
1: रहेंगे,
3: रहेंगे। वाह
1: वाह
3: वाह
1: वाह,
3: वाह वाह,
1: ऐसे रहो जहां में तुम हो के बेमिसाल, ऐसे
3: ऐसे
1: रहो
3: रहो
1: जहां में
3: तुम
1: तुम
3: हो के
1: हो के
3: बेमिसाल,
1: बेमिसाल,
3: बेमिसाल।
1: हरगिज कभी जुदाई का आए नहीं ख्याल, हरगिज कभी जुदाई का
3: आए
1: आए
3: नहीं
1: नहीं
3: ख्याल,
1: ख्याल, त्योहार हो या ईद हो सब मिलके मनाएं, नगमे वफा के प्यार और मोहब्बत से सुनाएं, एक दूसरे के गम और खुशी मिलके सहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम
3: हम
1: एक
3: एक रहेंगे।
1: रहेंगे,
3: बहुत खूब बहुत खूब,
1: चाहत से दुश्मन को देखोगे प्यार से, चाहत से जो दुश्मन को देखोगे प्यार से वो दोस्त नजर आएगा हर एतबार से, तुम एक हो तो कोई बुरा कर नहीं सकता, फितना कोई भी

0: तुमको जुदा कर नहीं
1: क्या
0: सकता।
1: बात।
0: दरियाए मोहब्बत में सदा मिल के बहेंगे, हम एक थे, हम एक है, हम
1: हम
0: एक
1: एक रहेंगे।
0: रहेंगे।
1: वाह,
0: खुशबुए
1: बहुत खूब,
0: गुल जुदा है तो लेकिन चमन है एक,
1: वाह।
0: खुशबुए गुल जुदा है तो लेकिन चमन है एक, रंगे लहू है एक तो अपना वतन है एक।
1: क्या बात,
0: मिलके रहोगे बम्बू तो दिल शाद करेगी, हर आने वाली नस्ल तुम्हें
1: क्या
0: याद
1: याद करेगी।
0: करेगी।
1: वाह
0: एक
1: वाह, क्या
0: साथ
1: बात है,
0: हम
1: क्या
0: जो
1: बात है
0: रोए,
1: भाई,
0: एक साथ हम जो रोए तो एक साथ हंसेंगे, साथ हम जो रोए तो एक
1: एक
0: साथ
1: साथ हंसेंगे।
0: हंसेंगे। हम
1: हम
0: एक
1: एक
0: थे,
1: थे,
0: हम
1: हम
0: एक
1: एक,
0: हैं, हम एक
1: वाह भाई,
0: रहेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब भाई।
0: ये आजकल शादियों में की तकरीब में वीडियोग्राफर को जो बुलाया जाता है
1: जी,
0: उसका हाल सुनिए साहब।
1: चल।
0: कोई तकरीब हो फूलों का चमन देखता है, कोई तकरीब हो फूलों का चमन देखता है, कितने खुश रंग लिबासों में बदन देखता है।
1: ना, क्या बात, वाह वाह,
0: बंबू क्या वीडियो वाला भी है किस्मत का धनी, दूल्हे से पहले ये कमबख्त दुल्हन देखता
1: अरे
0: है।
1: वाह वाह वाह, क्या
0: क्या
1: बात है
0: दुल्हन
1: भाई,
0: देखता
1: अरे
0: है,
1: वाह, अच्छा
0: वाह
1: तंज
0: वाह
1: है,
0: वाह,
1: अच्छा
0: बिल्कुल
1: तंज है,
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छा
0: मजा
1: तंज
0: समझा।
1: किया आपने समाज।
0: सही कहा
1: वाह
0: आपने।
1: वाह वाह,
0: और एक, हुआ अफसोस क्या किया बीवी के धोखे में, हुआ अफसोस क्या किया बीवी के धोखे में, जहर का जाम मैंने पी लिया बीवी के
1: बीवी के
0: धोखे में।
1: धोखे, अरे वाह,
0: मेरी सास ब्यूटी पार्लर से सच कर घर में जब आई, हेलो डार्लिंग उसको कह दिया बीवी के धोखे में।
1: क्या बात है,
0: वाह
1: बहुत खूब, बहुत
0: वाह।
1: खूब।
0: एक तंजिया चव्वा है साहब, शोकेश में है जूते, फुटपाथ पर किताबें।
1: अच्छा,
0: शोकेश में है जूते,
1: वाह वाह
0: फुटपाथ
1: वाह,
0: पर किताबें, सदियों के बाद अब भी दौरे जहालत है।
1: क्या बात, क्या
0: सदियों के
1: कहें।
0: बाद अब भी दौरे जहालत है, देखा जो मैंने बम्बू, अंदाजा हुआ मुझको, इंसान को इल्म की नहीं जूतों की जरूरत है।
1: अरे वाह
0: इंसान
1: वाह
0: को
1: वाह,
0: इल्म
1: क्या
0: की
1: बात है,
0: नहीं
1: क्या बात है,
0: जूतों की
1: वाह वाह वाह
0: जरूरत
1: वाह
0: है।
1: वाह, अच्छा तंजा, बहुत।
0: ये एक और संजीदा चव्वा मुलाहजा फरमाइए।
1: इरशाद इरशाद,
0: वक्ते खजा महज है जान का लहू, वक्ते खजा महाफिज है जान का लहू,
1: जी,
0: इंसान के काम आता है इंसान का लहू।
1: वाह क्या बात,
0: उस वक्त पूछता नहीं ये कोई डॉक्टर, हिंदू का लहू है या
1: क्या
0: मुसलमान
1: बात,
0: का
1: अरे वाह,
0: लहू,
1: क्या बात है,
0: हिंदू का
1: क्या बात
0: लहू
1: है,
0: है।
1: क्या बात, वाह वाह वाह,
0: ये नौजवान नस्ल के ताल्लुक से, मुश्किल मेरी आसान क्या मौला नहीं करता, मुश्किल
1: आसान
0: मेरी
1: मुश्किल मेरी
0: आसान क्या
1: क्या
0: मौला नहीं
1: मौला नहीं
0: करता,
1: करता,
0: इस वास्ते बंदों पे मैं तकिया नहीं करता। जिस दिन से बहू आई है घर में मेरे अपने, बेटे की कमाई पे भरोसा नहीं
1: क्या बात,
0: करता,
1: क्या बात,
0: बेटे की
1: वाह
0: कमाई
1: वाह
0: पे
1: वाह
0: भरोसा नहीं
1: वाह वाह,
0: करता।
1: बहुत खूब,
0: बड़ी
1: वाह,
0: मनहूस है ताबीर मेरे ख्वाब के साथ,

0: मैंने उसकी सिस्टर मत देना, मुझको लूना बतला कर तुम सेवन सीटर मत देना। अरे वाह। अब हेलमेट के ताल्लुक से जरा सुनिए
1: अच्छा
0: सर,
1: अच्छा वो तो करंट इशू
0: करंट
1: है।
0: इशू है।

0: वो क्या करे, चिकनी हंडी पे कलर करके निकल जाते
1: अरे
0: हैं
2: वाह
0: लोग। एक
2: वाह
0: आखिरी चवा बोल के खत्म करता हूँ,
3: वाह,
0: एक आखिरी।
3: इरशाद इरशाद,
0: ये नाखलफ औलाद के ताल्लुक से माँ क्या कह रही है, बस ये एक आखिरी चवा सुन लीजिए। छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी, छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी, जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद, जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद। बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है अब, बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है अब। बददुआ किस मुंह से दूं तुझको दुआ देने के बाद, बददुआ किस मुंह से दूं तुझको दुआ देने के बाद।
4: जनाब मोइन अमर बंबू के बाद अब मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ सदर मुशायरा चिचा पालमुरी को दावत सुखन देती हूँ कि वो अपना कलाम सुनाए। चिचा पालमुरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनका नाम बैनुल अक्वामी सतह पर जाना जाता है। संजीदा व मिजाहिया दोनों तरह की शायरी करते हैं, बेहतरीन नादगो शायर की भी हैसियत से जाने जाते हैं। चिचा पालमुरी की शख्सियत पर सरदार सलीम का ये शेर पेश है, दिल में रखा लब पे वावेला नहीं होने दिया, दिल में रखा लब पे वावेला नहीं होने दिया, मैंने तेरे दर्द को मैला नहीं होने दिया। जनाब चिचा पालमुरी।
3: मोहतरम सामईन, ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद से जो मिजाहिया मुशायरा अब तक जो आपने सुना है, ये चार भतीजों की बारी थी, अब आखिर में चिचा की बारी है।
2: क्या बात है,
3: मैं चाहता
2: वाह
3: हूँ,
2: वाह।
3: जो चेहरा झुर्रियों से याद से मामूर होता है, जो चेहरा झुर्रियों से याद से मामूर होता है, वजीफा तब कहीं सरकार से मंजूर होता है। अजब क्या है चिचा जब बज्म में आए तो हलचल हो, अजब क्या है चिचा जब बज्म में आए तो हलचल हो, जहां हो चार बंदर एक वहां लंगूर होता है।
2: अरे
3: एक हजल के कुछ शेर पेशे खिदमत है।
2: अच्छा।

औरता मर्दा सब घर के जादूगरा, कोई चक्कर चलाए तो मैं क्या करूं। औरता मर्दा सब घर के जादूगरा, कोई चक्कर चलाए तो मैं क्या करूं। शेर सुनिए, मैं

0: उठते ही झाड़ू लगाना तो है, बर्तना धो को तालू खुजाना
1: क्या
0: तो
1: बात है,
0: है,
1: क्या बात है, क्या बात,
0: जबके
1: वाह वाह,
0: सर भर को उनके जुआ है, मगर मेरी तालू खुजाए तो
1: मैं क्या
0: मैं
1: करूं,
0: क्या करूं। ये जो
1: वाह
0: समा खराशी का जो मैंने आपका वक्त खराब किया है, असल में मुझे सुनाने हैं दो बंद इस नज्म के, मुझे
1: अच्छा
0: सिर्फ दो बंद
1: अच्छा
0: सुनाना है।
1: वाह वाह,
0: एक बंद है जो आजकल जिस तरह की शादियां हो रही हैं, लेकिन इसमें दो अहादीस का इसमें मैंने जिक्र करने की कोशिश की है, आप वहां तक पहुंच
1: वाह
0: जाएंगे।
1: वाह,
0: बैंड बाजे पटाखों की है गड़बड़ी, और दावत में नल्ले तलक दे तड़ी,

एक और बंद सुनिए, चांद के सात तारों के दसमा डला, 14 सदियों से हासिल हैं दो आफरा। चांद के सात तारों के दसमा डला, 14 सदियों से हासिल हैं दो आफरा, रूबरू आज भी है।

0: मैं क्या करूं, मखते का मुलाजा, मेरी किस्मत में लिखो है दो एटमा, बावजूद इसके आते हैं फोटुआ, मेरा फिगर ही ऐसा है चिच्चा हजरत, रिश्ते घर बैठे आए तो मैं क्या करूं। एक और नज्म है साहब, दकनी में एक महावेरा बहुत मशहूर है, पानी छिड़कना है, पहले होता यूं था, अब हो नहीं रहा है। जब किसी घर बच्चा होता तो घर की बड़ी बूढ़ियां बच्चे को नहलाने से पहले थोड़ा सा पानी पहले उसकी पीठ पर छिड़कती थी, तो उससे मुराद ये था उस
1: जी
0: बड़ी बी के जो
1: जी
0: किरदार हैं उसमें आ जाते हैं।
1: जी हाँ
0: मैंने
1: हाँ
0: उस किरदार में, यानी कई एक किरदार को अलग अलग मैंने करते हुए कुछ किरदारों की मैंने पेश करने की कोशिश की है।
1: अच्छा
0: अब मुलाजा हो, बोल रे राजा हिंदुस्तानी, बोल रे राजा हिंदुस्तानी, तुझे कौन छीन गिरे पानी, तुझे कौन छीन।

रे पानी बन ला जाओ, जामू खोलना है नहीं खोलता, झूठ को सच से ज्यादा तोलता, मिश्री मिला को एलवा घोलता। जामू खोलना है नहीं खोलता, झूठ को सच से ज्यादा तोलता, मिश्री घुला को एलवा घोलता। हीरो या

पानी, उजला है पैराहन तेरा लेकिन काला है मन तेरा, साजिश तेरी साधन तेरा, उजला है पैराहन तेरा लेकिन काला है मन तेरा, साजिश तेरी साधन तेरा, लूट मार है या सुल्तानी।

0: कान पकड़ के पूछी नानी तुझे कौन जिंदगी रे पानी, तुझे कौन जिंदगी रे पानी, तुझे कौन जिंदगी रे पानी, तुझे कौन जिंदगी रे पानी।
1: क्या बात है, क्या बात है,
2: बहुत खूब, बहुत खूबसूरत नज़्म आप पेश कीजिए। वाह वाह वाह।
0: एक नज़्म है जिसका अनवान है करिश्मे मोबाइल फोन के
1: जी।
0: उसके कुछ करिश्मे मुलाजा हो, अर्ज किया है। टूट गए

0: काला, इसके जो है सब इसके जो कामा, आम के झाड़ को लग रही जामा, नाच रही गा रहे नकली हूरा, पादा नीसा सारे गामा, दोजख में जन्नत के खाबा,
1: अरे वाह,
0: इसके जो है सब इसके जो कामा, इसके जो है सब इसके

0: FM Rainbow 101.9।
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियां भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रही नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियां चलाओ।
2: जी हाँ दोस्तों, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम खुद भी महफूज रहेंगे और दूसरों को भी महफूज बना पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये पूरा वीक जो है नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है। न्यूट्रिशन वीक के मौके पर आज हम बात करेंगे इस पर, लेकिन आपको पहले ये बता दें कि प्रोग्राम में अब वक्त हो चुका है नगमों के सफ़र पर रवाना होने का। मेरी मुराद है प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा का, जिसमें हम आपको सुनाएंगे खूबसूरत और प्यार भरे नगमे, लेकिन साथ ही नगमों के बीच हम बात करेंगे न्यूट्रिशन वीक जो चल रहा है उस सिलसिले में भी कि सेहत और गजाइत हमारी ज़िंदगी हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ वो उसका ताल्लुक जो है हमारे जिस्म से बड़ा गहरा है। जी दोस्तों, मैं जिस मौजू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसका हमारी खुराक से, हमारी सेहत से, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत गहरा रिश्ता है। ग़िज़ाइयत की बात हो और पेट का ज़िक्र ना हो, ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे बिरयानी हो और खुशबू का ज़िक्र ना हो। हम जो खाते हैं उसका असर सिर्फ हमारे जायके पर नहीं बल्कि हमारे पूरे जिस्म और हमारी सेहत पर पड़ता है। अच्छी और मुतवाजन ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट हमें सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करती है। तो आइए आज इसी सिलसिले में ज़रा अपने पेट साहब की भी खैरियत दरियाफ्त करेंगे, क्योंकि पेट भी बड़ा दिलचस्प किरदार है। खाना अच्छा हो तो सबसे पहले खुश, और खाना ज़्यादा हो जाए तो सबसे पहले नाराज़। तो आइए जानते हैं हमारे पेट के आखिर हमसे क्या शिकायतें हैं और हम उनकी उसकी शिकायतों का इजाला कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले आपकी शिकायतों को दूर करना चाहते हैं।

दोस्तों, यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं खूबसूरत, दिलकश और प्यार भरे नगमे। अभी आपने फिल्म महबूब से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत सुना। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है, यानी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, तो हम नगमों के बीच में बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन के मामले में पेट का क्या रोल है और क्या किरदार है। तो जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि पेट दरअसल हमारी सेहत का असली निगहबान है। कहते हैं कि इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन आजकल तो मामला कुछ यूं है कि दिल, दिमाग, जुबान और पेट सब मिलकर इंसान को खाने पर मजबूर करते हैं। सुबह आँख खुलते ही बाज़ लोगों का पहला सवाल होता है, नाश्ता क्या है? नाश्ता अभी हुआ नहीं कि दोपहर के खाने की फिक्र शुरू हो जाती है। दोपहर का खाना खाया नहीं कि शाम की चाय के साथ क्या होगा, इसका मंसूबा बनने लगता है। और रात को खाना खाने के बाद कहते हैं, बस अब कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन 10 मिनट बाद ही फ्रिज खुलने की आवाज़ आती है, तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्रिज क्यों खोला गया होगा। तो दोस्तों, पेट की मुख्तलिफ कैफियत पे और न्यूट्रिशन के मामले पे जो पेट का किरदार है, उसका रोल है, उस पे हमारी बातचीत जारी रहेगी। मगर पहले सुनते हैं ये दिलकश गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, अभी जो गीत आपने सुना फिल्म कभी कभी से सुना और जिसे गाया था लता मंगेशकर और मुकेश कुमार ने। दोस्तों, आज गीत सुरीले गाते जा में हम बात कर रहे हैं नगमों के बीच बीच में न्यूट्रिशन वीक के हवाले से, और न्यूट्रिशन वीक के हवाले से हमारी बात हो रही है ग़ज़ाइयत या सेहत में पेट का क्या किरदार होता है। तो पेट भी बड़ा अजीब है, जब भरा हुआ हो तो कहता है बस भाई अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है, और जब सामने बिरयानी कबाब समोसे या गरम गरम पकौड़े आ जाएं तो अचानक पेट के सारे रूल टूट जाते हैं। हम में से बहुत से लोग पेट को सिर्फ खाना रखने की अलमारी समझते हैं, हालांकि पेट हमारा पूरा निज़ाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, हमारी सेहत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। हम जो कुछ खाते हैं वो सिर्फ पेट ही में नहीं रहता, खुराक हजम होने के बाद उसके गजाई अज्जा जिस्म को तवानाई देते हैं, जिस्म के नशोनुमा और मरम्मत में मदद करते हैं। यानी हम जो खाते हैं इसका असर सिर्फ हमारे पेट पर नहीं बल्कि हमारी पूरी सेहत पर पड़ता है। तो दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखें और सुनिए माजी के दरीचों में झांकने पर मजबूर कर देने वाला ये नगमा।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जामे सुन रहे हैं, प्यार भरे नगमे। और हम इन नगमों के बीच में बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन वीक के बारे में भी, और न्यूट्रिशन और पेट का क्या रिश्ता है उसके बारे में भी। दोस्तों, पेट का मामला भी अजीब है। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि इंसान की उम्र बढ़ती है, तजुर्बा बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और बाज़ औकात इन सब के साथ पेट भी बढ़ने लगता है। और फिर यार दोस्त कहने लगते हैं, अरे भाई, अब तुमसे गला मिलना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पेट इतना बढ़ा हुआ है कि गले तक पहुँचने में मुझे बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। वैसे इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती गले पड़ जाते हैं, पेट उनको दूर रखने में मदद करता है। लेकिन सच ये है कि पेट निकलना सिर्फ मजाक की बात नहीं, कभी हमारी खुराक, कभी वर्जिश की कमी, कभी बैठे रहने की आदत और कभी उम्र के साथ जिस्म में आने वाली तब्दीलियां इसकी वजह बन सकती हैं। तो आइए संजीदगी और मजाक के बीच आपको सुनाते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और अब पेश है पयाम शब। तहरीर व पेशकश है जनाब जैदी साहब की। लीजिए, समाप्त कीजिए।

0: कुछ इतनी रोशनी में थे चेहरों के आईने, दिल उसको ढूंढता था जिसे जानता न था। जिंदगी में हर चमकती हुई चीज हकीकत नहीं होती, इंसान अक्सर खूबसूरत चेहरों, जाहिरी कामयाबियों और दुनिया की चकाचौंध में गुम हो जाता है, लेकिन दिल को हकीकी सुकून सिर्फ सच्चाई, इखलास, मोहब्बत और अल्लाह की याद से मिलता है। इसीलिए जाहिरी हुस्न से मुतासिर होने के बजाय बातिन की पाकीजगी और किरदार की खूबसूरती को तलाश करना चाहिए। जाहिरी चमक दमक हमेशा हकीकत की आईनादार नहीं होती।
1: दोस्तों, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ नए रंग इख्तिताम पजीर होता है। अगली बज़ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री

0: दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत के विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आए विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium

0: and good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amrish Saxena.
1: Namaskar. श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं. स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन. पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद अमरीश जी.
1: आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: थैंक यू अमरीश. Benchmark domestic indices extend losing streak. Sensex falls over 400 points. Nifty settles below 23,900. India and Belgium agree to double the bilateral trade in next five years. Also discuss expanding cooperation in areas including semiconductors and critical minerals, among others. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज भी गिरावट का रुख रहा. सेंसेक्स 400 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,900 अंक से नीचे बंद हुआ. भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए. सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई.

0: And before we begin the program and give you details of the top story, here's a disclaimer for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों के मुख्य सूचकांक लगातार चौथे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 417 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 41 अंक यानी 0.2% की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा. इससे पहले विदेशी मुद्रा बाजार में मजबूत प्रवाह से सकारात्मक धारणा के चलते बाजार बढ़त के साथ खुले. हालांकि कारोबार के दूसरे हिस्से में बाजार शुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख सके. कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण निवेशक सतर्क रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में प्रमुख सूचकांकों की तुलना में मजबूती देखने को मिली. निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.4% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% की तेजी दर्ज की गई.
0: Benchmark domestic equity indices declined for the fourth consecutive session today. The Sensex shed 417 points or over 0.5% to close at 76,153. The Nifty fell 41 points or 0.2% to settle at 23,873. Earlier, the markets opened on a higher note amid positive sentiment, supported by strong foreign exchange inflows. However, markets failed to hold their initial gains during the second half of the session as elevated crude oil prices and global yields kept investors cautious. On the other hand, the broader market at the National Stock Exchange showed resilience. The Nifty Mid-Cap 100 index rose 0.4%, while the Nifty Small-Cap 100 index jumped 1.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन 2.2%, ट्रेंट 1.9% और आईटीसी 1.6% नीचे रहे. दूसरी ओर एक्सिस बैंक में 0.9%, अडानी पोर्ट्स में 0.8% और एशियन पेंट्स में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई.
0: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged upward. Among the top performers, realty rose 2.4%, housing finance and capital goods gained around 1%, and mid-small private banks added 0.9%. In contrast, focused IT and IT declined 1%. Consumer durables fell 0.6% and auto lost 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,545 companies advanced, shares of 1,778 companies declined, and shares of 223 companies

0: remained unchanged.
1: और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94 रुपए 49 पैसे

0: मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखें तो वहां पर हमने अच्छी बढ़त देखी है। स्मॉल कैप में तो 1% इंडेक्स में बढ़त देखी, तो ये काफी मिला जुला सा बाजार है। और ये कहना मुश्किल है कि ये बाजार में इनहेरेंट मंदी थी, जबकि एडवांस डिक्लाइन में भी हम देखते हैं एडवांसिंग स्टॉक्स काफी अच्छे थे। तो हेडलाइन नंबर्स तो हमें बता रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी है, लेकिन अगर व्यापक बाजार को देखता हूं, ब्रॉडर मार्केट को देखता हूं, तो मुझे उतनी कमजोरी नहीं लगती। दूसरा ये मैं कहूंगा कि जो भारतीय बाजारों के जो इंटरनल फंडामेंटल्स हैं, खासतौर से दो बड़ी बात मैं कहूंगा। पहली बात, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईस की जो डेटा हमारे सामने आना शुरू हुआ है, वो बहुत अरसे के बाद पॉजिटिव आना शुरू हुआ है। थोड़ी बाइंग शुरू हुई है, बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं है, बहुत बड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन सेलिंग नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा है कि मामूली हम देखते हैं बाइंग हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है बाजारों के लिए। और दूसरा, जो एफसीएनआरबी जो डिपॉजिट स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया था, ये सोचकर कि हमें अपने जो मजबूत जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको और मजबूत करना है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो चौंकाने वाली है। 127 बिलियन डॉलर्स, पहले अनुमान आया था 20 बिलियन डॉलर का, उसके बाद बहुत ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट आए थे 50 बिलियन डॉलर के, और उसके सामने जो परफॉर्मेंस आई है, और वो भी जब ये स्कीम एक महीने पहले बंद कर दी गई। एक्चुअली ये स्कीम 30 सितंबर तक चलनी थी, लेकिन इतने ज्यादा फॉरेन फ्लोज थे कि आरबीआई को वो स्कीम एक महीने पहले बंद करनी पड़ी। उसके बावजूद 127 बिलियन डॉलर जो हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा है वो भारत में आए, तो ये कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। और मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में हमको बाजारों की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए।
1: पुनीत जी, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि जल्दी इस स्कीम को बंद किया गया और हम देख रहे हैं रुपए में जो मजबूती आई है, तो क्या कारण था कि अगर ज्यादा इनफ्लो आ जाता तो क्या उससे प्रॉब्लम होने वाली?
0: नहीं, देखिए दो प्रॉब्लम इसकी होती है। पहली प्रॉब्लम यह है कि जो आप जिस स्कीम के तहत ये लेकर आ रहे हैं उसकी थोड़ी कॉस्ट आरबीआई के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि आरबीआई ने जो एक्सचेंज का जो रिस्क है, जो प्रीमियम है, वो आरबीआई ने लिया, तो उसकी वजह से थोड़ी कॉस्ट ऑफ फंड्स आरबीआई को उसमें ज्यादा पड़ेगी। थोड़ा आप देखेंगे जो आने वाला समय है आरबीआई की बैलेंस शीट पे इसका असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। दूसरा, जो ये 130 बिलियन डॉलर का इन्फ्लो हुआ है, इस वजह से आज ही के आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको कि बैंकिंग सिस्टम में 10 लाख करोड़ रुपए सरप्लस लिक्विडिटी हो गई है। और जो ओवरनाइट रेट है, जो ओवरनाइट बैंकिंग रेट कहलाता है, ओवरनाइट बैंकिंग रेट रिजर्व बैंक के एक टारगेट रेट होता है कि रिजर्व बैंक एक राइट रेट मेंटेन करना चाहता है, उस रेट के नीचे आ गया है ओवरनाइट रेट। यानी बैंकों को ऊपर ये बर्डन पड़ेगा, उनको जो पैसा सरप्लस बैंक में है वो डिप्लॉय इतनी फास्ट तो देखिए कर नहीं सकते। 10 लाख करोड़ रुपए आप इमीडिएटली आप उधार नहीं दे सकते, डिप्लॉय नहीं कर सकते, और वो बैंकों की ट्रेजरी में वो पड़ा हुआ है, उसकी कॉस्ट पड़ रही है बैंक के ऊपर। बैंक ने ऊपर रेट पे बोरो किया हुआ है, 6.5% एफसीएनआरबी में बैंक्स को रेट दिया है उन्होंने, तो इसका असर नेगेटिव पड़ता है कि ज्यादा पैसा भी और जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे हैं उसका नुकसान होता है, और यही कारण है कि आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया है।
2: पुनीत, यू नो markets, of course, like we said, saw today, it's the fourth day that the markets, this week at least, that the markets have, you know, ended in red, closed in red. But this is not a one-off. We've been seeing this volatility for a few months now, over a period of time. Now, for those of the investors, for those people who do not have the appetite to invest in a stock market, who are risk-averse, at this moment, if they do not want to, you know, venture into the stock market, or if they are already in the stock market, but they are looking at other avenues, what are the other options, especially given the kind of geopolitical situation right now there is, what are the other options they have for investment?
0: Anubha, it's a very good question you put forth, and it's very relevant in today's thing. Suppose you don't want to invest in markets, you don't want to take that risk. Government, over the past few years, particularly last 5-6 years, has introduced many interesting instruments which are very low risk and a higher return than FDs, bank deposits that usually people go for. For example, government has a lot of infrastructure investment trusts, which are called InvITs. Yeah. They usually give about 8-10%, maybe more in some cases, 10-12% kind of return annually, and they're absolutely safe. Most of them are very safe. You have real estate investment trusts, REITs, which have been introduced. Yes. And also government bonds, which are now listed on the exchanges. If you invest in government bonds, then you have a return of about 7-7.5%, 8%, so which is higher than FD rates. So there are a large number of instruments. Plus, you also have what we typically call hybrid funds. No? Where there's a large proportion of money invested in fixed fixed income instruments and less in equities. So there are plenty of investment options for normal investors, and for senior citizens, of course, there are many schemes
2: yes,
0: which are so they can invest up to 30 lakh rupees.

0: It gives me a lot of satisfaction that our business activity continues to be robust.
1: Right.
0: It continues to expand.
1: Yeah.
0: Many other countries have seen huge challenges. And here I might mention the fact that China is facing a crisis in manufacturing.
1: Okay.
0: There is a lot of talk right now that China has to come out with a stimulus to boost its... And this is despite China having the highest possible exports, highest numbers of exports in the last many, many years. That means China's domestic economy is not doing well at all. Because export numbers are very, very large. So clearly, I think, given these challenges and the context of the geopolitical difficulties we have, I think these numbers are pretty good. And the moment the inflation pressures go down and I think the war sooner or later comes to an end, I think we'll do well.
1: Right.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. भारत और बेल्जियम के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा भविष्य और भरोसेमंद सप्लाई चेन दोनों देशों की साझा प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आज हुए समझौता ज्ञापन से आपसी सहयोग की निरंतरता को नई गति मिलेगी.
3: क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है. सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है. इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे. बेल्जियम की कंपनीज के लिए हमने भारत में इन्वेस्टमेंट फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का गठन किया है. हमने इंडिया बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक रेगुलर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है. हम दोनों देशों की फाइनेंशियल, फिनटेक और रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाएंगे और इन सभी पहलों से हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे.
2: और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने अपने वक्तव्य में भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया. पुनीत जी, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं भारत और बेल्जियम के बीच में और बेल्जियम दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. और अगर इसको हम इस नजरिए से देखें कि भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है, तो इस इन समझौते के क्या मायने?
0: देखिए, भारत ने, जैसे आपने कहा कि भारत अपना जो ट्रेड बास्केट है वो एक्सपैंड कर रहा है बहुत तेजी से. तो एक तरफ हम देखते हैं कि एफटीए हम यूके से साइन करते हैं, ईयू से साइन करते हैं, अफ्रीका में साइन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से साइन करते हैं. तो बेल्जियम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी में बेल्जियम का बहुत बड़ा योगदान है. और जैसे हम जानते हैं कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा

0: और वो हमें 5% का हमारा लक्ष्य है, प्रधानमंत्री ने कई बार ये बात कही है। और मुझे लगता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक जो कॉम्प्लेसेंसी थी, एक हम बिल्कुल बैठे थे आराम से कि देखिए कोई बात नहीं, ट्रेड हमारा एक धरे पे चला आ रहा था पिछले 50-60-70 वर्षों से, वो एक शेकअप हुआ है। और इसलिए ये जो बास्केट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खास तौर से मैं कहूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सच बताऊं आपको, इसका असर आपको 5 वर्ष के बाद मालूम होगा। ये अभी ये एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, इसका असर अगले 6 महीने में या 1 साल में आप नहीं देखेंगे। जो नंबर्स हैं उसमें 2 से 3 वर्ष 4 वर्ष लगेंगे, फिर आप इसका असर देखिएगा।
1: और अभी तो जैसा गोयल जी ने कहा है कि कनाडा, मेक्सिको, चिली और तमाम और देशों के साथ भी भारत इस तरह के समझौते करने वाला है।
0: 50 ऐसे FTAs इन द वर्क्स हैं भारत के लिए, और एक बहुत बड़ा एक नंबर है। देखिए भारत जैसी अर्थव्यवस्था ही अफोर्ड कर सकती है, छोटे देश तो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था इस पोजीशन में है कि हम ऐसे एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं, ये भी एक उपलब्धि है।
2: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी टुडे एम्फसाइज्ड दैट इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड्स नंबर वन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ड्रिवन बाय इनोवेशन, quality and competitive pricing. Addressing the 66th annual convention of Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, in New Delhi, Mr. Gadkari said the sector, currently valued at over 22.75 lakh crore rupees, contributes nearly 15% of the country's GST collections and supports around 4 crore direct and indirect jobs. He highlighted that India's automobile exports grew by 24% during 25-26. The union minister also expressed confidence that the industry's contribution to the country's economic growth will continue to expand. Puneet, you know, like I just read that the auto sector is really very, very important for us. It contributes to our GDP in a very big way. The exports have grown by 24% in 25-26. What is the way forward? What are the areas where we need to work in this sector?
0: So, Anubhav, like you said, I think if for any country, any economy, automotive sector is central to growth, because it is not only the direct taxes or the employment that it provides, the indirect mobility, the indirect momentum it provides to the economy. So unless the transportation sector grows, you can't have an economy which is growing. So clearly it is that important. However, in India, this industry is transforming because of the way the fuel sector or the energy sector is transforming. So now you have a whole spectrum of vehicles, from electric vehicles to hybrids to ethanol driven to mixed fuel. I think that is the way forward. The industry has to adapt to these new technologies in terms of fuel, in terms of mobility, and that is how we can grow. Also, if you look at exports, if you look at new technologies, I think innovation in automotive sector will be the way forward for
2: us. So R&D is one area where we need to really work.
0: Absolutely. And I know personally, I know a lot of people who are working in this area, and innovation and technology and research is the heart of this. If we don't do it, we will lag behind for sure.
1: और चलते हैं एशिया के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। आज एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 0.3% बढ़ा, जबकि जापान का निकेई 225 0.2% गिरा। पुनीत जी, आप क्या कहेंगे आज के बाजारों की परफॉर्मेंस के बारे में?
0: देखिए, एशिया यूरोपीय बाजारों में हमने देखा है कि काफी वॉलेटिलिटी बहुत रही है पीछे, खासतौर से सेमीकंडक्टर सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि स्टॉक्स की बहुत ज्यादा वेटेज है कोरिया में, जापान में, ताइवान में, तो वहां पर काफी वॉलेटाइल वो रहा है। और अमेरिका में भी थोड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयरों में गिरावट हमने देखी है पिछले दिनों, तो ये एक रिस्क फैक्टर रहा है इकोनॉमीज के लिए। पर मुझे लगता है कि गिवन द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये वॉलेटिलिटी एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। आप देखेंगे कभी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, और इसके मुकाबले भारत तो काफी स्टेबल है।
2: Let's move on to commodities. Global crude oil prices erased earlier losses and hovered near 6-week highs after fresh U.S. strikes on Iran and renewed Israeli threats against Tehran heightened concerns about supply disruptions. Brent crude was trading 1.6% up at $97.17 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 2.2% higher at $93 per barrel when reports last came in.
1: और सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1.8% बढ़कर 1,53,941 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी 1.8% बढ़कर

0: 2,32,533 रुपए प्रति किलोग्राम थी। पुनीत जी, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बार फिर से हमें तेजी दिखाई दे रही है सोने और चांदी में आज।
1: अमरीश जी, देखिए, जैसा शेयर मार्केट में तेजी मंदी चल रही है, काफी वॉलिटिलिटी चल रही है, ऐसे ही करेंसी मार्केट्स में, यील्ड में हम देख रहे हैं, वैसा ही माहौल कुछ सोने चांदी के बाजारों में लग रहा है। काफी वॉलिटाइल है। परसों बाजार काफी जोर के गिरे थे, फिर वहां पर फिर बढ़त आई। ये भी न्यूज ड्रिवन है, सेंटिमेंट ड्रिवन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी ये माहौल रहेगा, तो पूरा एक वॉलिटिलिटी का माहौल या इंस्टेबिलिटी का माहौल मार्केट्स के अंदर और इकोनॉमी में भी चल रहा है, और उसी का ही रिफ्लेक्शन है। बट देखिए, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी है, बहुत मंदी है, वो 1-2% के रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा ही रहेगा शायद।
2: A very quick comment from you, Puneet. You know, the global crude oil prices, we saw that every day it's a, you know, volatility. But given the fact that we were earlier discussing, our foreign exchange reserves are very comfortable. So it's a good news for us, given the way the oil prices are moving.
1: So, Anubha, oil prices, of course, are a matter of concern, and it really hurts the Indian economy, no doubt about it. We wish it were lower. However, it is very political right now. Right. And I don't think this is going to sustain. So this may be a short-term challenge for us, but longer-term, I think we'll be in a happy place.
0: पुनीत जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद अमरीश जी।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices extend losing streak. Sensex falls over 400 points. Nifty settles below 23,900. India and Belgium agree to double the bilateral trade in next 5 years. Also discuss expanding cooperation in areas including semiconductors and critical minerals, among others. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौती

0: चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने और बनाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र संस्थानों से विश्वास 2026 योजना के तहत लंबे समय से लंबित ईपीएफ बकाया विवादों को कम दर पर निपटाने की अपील की है। यह एक मुश्त निपटान योजना है जिसमें नियोक्ता कम जुर्माना देकर पुराने विवादों का समाधान कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 28 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी और इसकी अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकारी ई मार्केटप्लेस और टेक्सटाइल कमेटी ने पुनर्चक्रित और दोबारा इस्तेमाल किए गए कपड़ा उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत कपड़ा कचरे, कतरनों और पुराने कपड़ों से बने उत्पादों को सरकारी ई मार्केटप्लेस के जरिए सरकारी खरीदारों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स स्मार्ट स्पोर्ट्स स्पेशलिटी अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि नए भवन से सेवाओं का विस्तार होगा और अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। भारत ने अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। देशभर में आज हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में पहला गीत फिल्म अमर प्रेम से, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। कहते हैं कि आसमान में टिमटिमाते जो तारे होते हैं उनकी भी अपनी एक भाषा होती है और वो भाषा ऐसी होती है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे आसमान में टिमटिमाते तारों को तो आपको ऐसा लगेगा कि वो तारे कोई संदेश लिख रहे हैं। दूर कहीं बादल भी अपनी धीमी कहानी कहता रहता है और तारे लिखते रहते हैं। हवा के स्पर्श में आज कुछ नया सा एक एहसास है और संगीत के हर सुर में जैसे दिल के पास आने की बात है। रात की ये घड़ी बता रही है कि ये जो पल है ये पल अपने आप में कितना खास है। ये जो गीत आप सुन रहे हैं, हर अगला गीत ये हमें बताकर जाता है कि आने वाला हर एक पल बहुत खूबसूरत होगा। और अगर हम अपनी दुनिया में कहीं किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत गुम हैं, तो ये वो पहर है जो हमें खुद से मिलने का मौका देती है। तो भूल जाइए उन सारी बातों को कुछ देर के लिए और आइए सुनते हैं एक और गीत, सुंदर सा आप सभी के लिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली, आवाज है लता मंगेशकर की।

जब दिन अपने सारे रंग समेटकर दूर चला जाता है, रात का आकाश नई तस्वीर बनाता है, कहीं नींद पलकों पर धीरे धीरे उतरती है, कहीं कोई धुन मन के किसी कोने में ठहरती है, यही वो समय है, ये रात का ये पहर, जब यादें बिना बुलाए चली आती हैं और कुछ पुरानी धुनें चेहरे पर मुस्कान लेकर आती हैं। तो आइए इस पहर को संगीत की नरम रोशनी में सजाएं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है प्रेम गीत, आवाज है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती।

दिन का उजाला जैसे जैसे घटते घटते या यूं कहें कि ढलते ढलते रात की ड्योढ़ी पर दस्तक देता है, वैसे ही रात एक अलग कहानी लिखना शुरू कर देती है। रात की स्याही में डूबकर शहर भी अपना नाम लिखना शुरू कर देता है। दिन भर का किस्सा धीरे धीरे मिटने लग जाता है। दुकानों के जो शटर होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। सुनसान से रस्ते और दूर जाती गाड़ी के धुंधले से उजाले। रात के इस पहर की भी अपनी एक तहजीब होती है। हर आवाज यहां कुछ धीमी पर करीब महसूस होती है। और इस नर्म लय में जब हम अपने मन की आवाज को सुनते हैं तो हम खुद को भी खुद के थोड़ा और करीब पाते हैं। ऐसी ही कुछ और बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है दो दिल, आवाज है आरती मुखर्जी और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछले तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। वित्त मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन

0: युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हरित नौवहन की दिशा में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। श्री सोनोवाल ने कल गुरुग्राम के ऊर्जा और संसाधन संस्थान के ग्वाल पहाड़ी परिसर का दौरा किया और हरित नौवहन से जुड़ी विभिन्न पहलों की समीक्षा की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इससे त्रिपुरा के किसानों को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में राजघाट समाधि स्थित समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजघाट स्मारक के रखरखाव, साफ सफाई और प्रबंधन की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के फाइनल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium exchanged several agreements including letter of intent on defense cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes including cybercrime and diplomatic training. In his press statement yesterday, Prime Minister Modi emphasized that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. Home Affairs Ministry will make available the services of Central Forensic Science Laboratories, State Forensic Science Laboratories and National Forensic Sciences University Laboratories in India for DNA profiling of first-degree biological

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूँ मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में पहला गीत आवाज है सुमन कल्याणपुर और मुकेश की। फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। फिर एक सांझ हमारे हिस्से में आकर धीरे धीरे विदा हो गई। आंखों के भीतर न जाने कितनी ऋतुएं भीगती रहीं, किंतु अधरों ने बस इतना कहा, फिर मिलेंगे। कितना छोटा सा वाक्य था वह, पर उसके भीतर कितनी दूरियों के पार जाने की एक पूरी शक्ति छिपी थी। एक राह ने मुझे मेरी दिशा दे दी, एक राह ने मुझे मेरी दिशा दे दी, दूसरी ने उसे बुला लिया। नगर अलग थे, आकाश एक था, और उस एक आकाश के नीचे हमने अपने हिस्से की प्रतीक्षा बांट ली, और उस एक आकाश के नीचे हमने अपने हिस्से की प्रतीक्षा बांट ली।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयती। किसने छेड़ा मेरे अंतर के अनलिखे अक्षरों को, किसने छेड़ा मेरे अंतर के अनलिखे अक्षरों को कि बिना किसी निमंत्रण के भावों की धरती पर मधुर लहरियां उतरने लगी। मैं तो अपने ही दिनों की धूल समेटे सामान्य पथ पर चल रही थी। मैं तो अपने ही दिनों की धूल समेटे सामान्य पथ पर चल रही थी, किंतु किसी अदृश्य स्पर्श ने सांसों के निर्जन आंगन में एक ऐसी रचना लिख दी जिसका अर्थ केवल हृदय पढ़ सकता है। न यह आकर्षण था, न किसी अभिलाषा का विस्तार, यह तो मानो बहुत दूर छूट गई अपनी ही किसी पहचान का अचानक लौट आना था। मेरे भीतर कितने ही स्वर वर्षों से बिना उच्चारण के ठहरे थे, वे किसी वाद्य की प्रतीक्षा में नहीं थे, एक सच्ची अनुभूति के प्रतीक्षा में थे। ज्यों ही तुम्हारे स्मरण की हल्की रेखा मन की धरती पर उतरी, ज्यों ही तुम्हारे स्मरण की हल्की रेखा मन की धरती पर उतरी, हर निष्प्रभ कोना अपने आप अर्थ से भर गया, अपने आप अर्थ से भर गया। किसने छेड़ा मेरे अंतर के अनलिखे अक्षरों को कि बिना किसी निमंत्रण के भावों की धरती पर मधुर लहरियां उतरने लगीं।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। आपने कभी झमाझम बरसती बारिश को ध्यान से सुना है? बारिश जब होती है ना तो बिल्कुल वो लाइन जो है सच साबित हो जाती है कि फिराक की बारिश मलाल का मौसम, फिराक की बारिश मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। जनाब बारिश हर शहर को कमाल कर देती है। बरसते बारिश में कभी अपने शहर को ध्यान से देखिएगा, रात की आवाज बदल जाती है, छज्जे से गिरती धार कोई पुराना सुर छेड़ देती है, भीगी सड़क पर रोशनी की परछाइयां बहती हैं और बंद कमरों में तो न जाने कितनी स्मृतियां सांस लेने लग जाती हैं। ऐसे मौसम में जब कोई रात में चाय का एक गरम कप पकड़कर साथ बैठ जाए, कोई अपना पसंदीदा गीत सुनने लग जाए, किसी को

घर की याद सताने लग जाए और किसी को अपने पुराने शहर लौट जाने का मन करने लग जाए। तो कहते हैं कि दिल उस वक्त अपनी सच्ची कहानी सुना रहा होता है, यानी आपसे खुद की बात कह रहा होता है। बारिश का मौसम शायद इसलिए भी प्यारा है कि यह बिना कुछ कहे बहुत कुछ याद दिला देता है। बूंदों की धुन जो है वो हमारे मन की धुन के साथ कदम मिलाने लग जाती है। बातें और भी हैं बहुत सारी, फिलहाल इस रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है कामचोर, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत, फिर करेंगे और बहुत सारी बातें। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

वक्ता चला एक बार फिर से आपको याद दिलाने का कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10

10 मिनट पर कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

0: उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स के लिए है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,200 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के आयोजनों को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi from today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. The forum will provide a platform for dialogue among the participating judiciaries and for exchange of views on contemporary issues relating to justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development. Chief Justice of India Suryakant will hold a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations on the opening day. He will meet judicial leaders from Russia, China, Egypt, Indonesia, the UAE, Belarus, Kazakhstan, South Africa, Iran and Uzbekistan. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday called upon the automotive industry to deepen localization, expand exports and prepare to serve global markets. Addressing the 66th Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, annual convention in New Delhi, he urged the industry to seize the opportunities emerging from India's expanding trade partnerships, growing domestic market and global shifts in manufacturing. He said that the automotive sector would be one of the most important drivers of India's growth story in the years to come.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। कभी आपने गौर किया है, एक गीत जब खत्म हो जाती है तो उस गीत के खत्म होने के बाद भी उसकी जो धुन है बहुत देर तक भीतर चलती रहती है। कुछ गीत सुनाई नहीं देते, याद रह जाती हैं। उनसे जुड़े चेहरे, रास्ते, मौसम अचानक फिर से आंखों के सामने आने लग जाते हैं। शायद संगीत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो बीते हुए पल को फिर से जीने का एहसास देता है। और ये जो गीत होते हैं ना, जो हम सुनते हैं, अपने कुछ मनपसंद गीतों की लिस्ट बनाकर रखते हैं, ये गीत सिर्फ गीत नहीं होते, वे हमारे मन के, यादों के दरवाजे भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता खोलने लग जाते हैं। कोई भी गीत हो, उसकी धुन आपकी हो सकती है, हमारी हो सकती है, और हमारे और आपके धुन के होने का मतलब कि वो गीत जो हमें बहुत पीछे ले जाए, यादों के पुराने मौसम को फिर से दोहराने का मौका दे, ऐसी धुन आपकी भी हो सकती है और हमारी भी हो सकती है। किसी के मुस्कुराहट का कारण हो सकती है, किसी की याद का कारण बन सकती है। तो सुनते हैं एक और गीत और फिर करेंगे ऐसी ही कुछ और बातें। और अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है रेशमा और सेरा।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयदी। और आज सुरमई में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है दीवाना, आवाज है कुमार शानू और अलका याग्निक की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। रात से पूछिए तो वो दिन का हिसाब नहीं मांगती, बस अगली सुबह तक का थोड़ा समय देती है। जो अच्छा रहा उसे दिल में रखिए, और जो बिगड़ गया उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। कुछ फैसले सुबह की रोशनी में बेहतर समझ आते हैं, इसलिए हर सवाल का जवाब इसी वक्त हो जरूरी नहीं। आज बस अपने मन को थोड़ा आराम दीजिए, कुछ प्यारे गीत सुनिए, आने वाले कल के लिए थोड़ी सी जगह बचा कर रखिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह एक नया पन्ना लेकर आती है, और शायद अगली सुबह की कहानी आज की रात से ही शुरू हो रही हो। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आशा।

रात गहरी है तो क्या दिल में उजाला रखिए, रात गहरी है तो क्या दिल में उजाला रखिए, नींद आए न आए कोई ख्वाब निराला रखिए, नींद आए न आए कोई ख्वाब निराला रखिए। अगला गीत फिल्म लगान से, आवाज है उदित नारायण, आशा भोसले और वैशाली की।

कोई भूला हुआ नगमा सा बिखेरते जाइए, कोई भूला हुआ नगमा सा बिखरते जाइए। वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद अर्चित होंगे आपके साथ। फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं फिर मिलने के वादे के साथ और एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है संजोग, आवाज है लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंट्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्यों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के

0: कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi from today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. The forum will provide a platform for dialogue among the participating judiciaries and for exchange of views on contemporary issues relating to justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development. Chief Justice of India Suryakant will hold a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations on the opening day. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday called upon the automotive industry to deepen localization, expand exports and prepare to serve global markets. Addressing the 66th Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, annual convention in New Delhi, he urged the industry to seize the opportunities emerging from India's expanding trade partnerships, growing domestic market and global shifts in manufacturing. He said that the automotive sector would be one of the most important drivers of India's growth story in the years to come. He stated the industry had demonstrated strong growth and that rising incomes and aspirations offered considerable scope for this growth to continue. Vice President and ex-officio Chancellor of Punjab University, C.P. Radhakrishnan, will visit the university in Chandigarh today. During his visit, the Vice President will inaugurate the Advanced Instrumentation Facility at SAIF-CIL, Sophisticated Analytical Instrument Facility, Central Instrumentation Laboratories. The Vice President will also inaugurate the Punjab University Tech Innovation Forum, marking a major step forward in strengthening the university's research, innovation and startup ecosystem. Government has constituted a 31-member Joint Committee of Parliament on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel to examine the FCRA Amendment Bill. प्रोमिनेंट

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 3:10 हो चुके हैं और रोजाना की तरह अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मोहम्मद रफी जी की आवाज में बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार, बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार। मुनाफा कम है पर गुजारा हो ही जाता है। 3:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है,
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे नहीं,

0: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं।

अकेली रात बोलती तो बहुत है, अकेली रात बोलती तो बहुत है, लेकिन सुन सिर्फ वही सकता है जो खुद भी अकेला हो। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तुमने कुछ ना कहा, तुमने कुछ ना कहा और ना कुछ सुना हमने। तुमने कुछ ना कहा और ना कुछ सुना हमने। इशारों इशारों में ही सारी बात हो गई। वक्त का दोनों को ही पता ना चला, वक्त का दोनों को ही पता ना चला। देखते ही देखते सारी रात हो गई। 3:37 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

जलाकर हसरत की राह पर, जलाकर हसरत की राह पर चिराग आरजू के, हम तन्हा रातों में आज भी सिर्फ तेरे मिलने का इंतजार करते हैं।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, लिखा है तेरी आंखों में। महफिल में कुछ तो सुनाना पड़ता है, महफिल में कुछ तो सुनाना पड़ता है, गम छुपाकर अक्सर मुस्कुराना पड़ता है। कभी हम भी थे उनके अजीज, कभी हम भी हुआ करते थे उनके अजीज, आजकल उन्हें ये भी याद दिलाना पड़ता है। 3:52 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर, आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन का संघर्ष समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिनियम खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग की रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की उप सचिव एली लॉसन, जापान के विदेश मामलों के वरिष्ठ उपमंत्री हिरोयुकी नमाजू और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। इस दौरान समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत और वैश्विक स्तर के घटनाक्रमों पर भी विचार साझा किए। बैठक की तैयारियों के सिलसिले में अगली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं फिर से आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम किशोर कुमार जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। फिर होंगी कुछ प्यारी प्यारी सी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ।
1: चीज खास मैंने उस अंजाम देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

हौसले बुलंद कर अपने रास्तों पर चल दीजिए, हौसले बुलंद कर अपने रास्तों पर चल दीजिए, आपका मुकाम आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। बढ़कर अकेले आप पहल करके तो देखिए, बढ़कर अकेले आप पहल करके तो देखिए, आपको देखकर काफिला भी खुद ब खुद बन जाएगा। 4:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

ढूंढोगे अगर तो रास्ते मिल ही जाएंगे, ढूंढोगे अगर तो रास्ते मिल ही जाएंगे, मंजिलों की फितरत है वो खुद से चलकर कभी नहीं आती। 4:23 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को, कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को, याद अक्सर वही आते हैं जो उड़ जाते हैं।

लता मंगेशकर जी की आवाज में मेरा साया साथ होगा। मंजिलों पर पहुंचने के बाद ही पता चला, मंजिलों पर पहुंचने के बाद ही पता चला कि मंजिल से अच्छा तो सफर ही था। 4:41 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

एसटी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

जीवन में सब कुछ हमारा सोच और विश्वास पर ही निर्भर करता है। हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, लेकिन हमारा संदेह समस्याओं का बहुत बड़ा पहाड़ भी लगा सकता है।

जिन्हें नींद नहीं आती, जिन्हें नींद नहीं आती, सिर्फ उन्हीं को मालूम होता है सुबह होने में कितने जमाने लगते हैं।

4:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियो सिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की उपसचिव एली लॉसन, जापान के विदेश मामलों के वरिष्ठ उपमंत्री हिरियोकी नमाजू और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। इस दौरान समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शेरपाओ ने हिंद प्रशांत और वैश्विक स्तर के घटनाक्रमों पर विचार साझा किए। ये बैठक अगले क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की तैयारियों के सिलसिले में हुई। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी दी और आवश्यक निर्देश दिए। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। देश भर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिलें तो खुद की मेहनत से ही मिलती हैं। 5:11 हो चुके हैं, कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन से गीत के साथ।

ये दुनिया भी ठीक हमें वैसी ही दिखती है जैसा हम इसे देखना चाहते हैं। किसी को यहां पर गुलाबों में कांटे दिखाई देते हैं, तो किसी को कांटों में गुलाब।

जीवन में सब कुछ हासिल करना ही सफल जीवन की निशानी नहीं होती है। एक सफल जीवन की परिभाषा ये भी हो सकती है कि आपने पूरा जीवन कितना सुख और शांति के साथ जिया है और जी रहे हैं। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने हासिल तो सब कुछ कर लिया है पर फिर

वे जीवन में परेशान ही घूम रहे हैं। 5:25 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।